0: जो है वो शायद टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, मैं चेक करता हूँ कि शायद उसकी वजह से जो है ना वो इनके मैसेज नहीं आ रहे।
1: कोई बात नहीं, आप चेक करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जड़े तकड़ तकड़ जड़े नहीं तकड़ के उनका अपना मसला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी खूबसूरत चीज़ को देखने से कोई इनकार कर सकता है?
0: अच्छा बाबा फुका,
1: जी
0: उम्मीद और तवक्को,
1: वाह, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और तवक्को दो मुख्तलिफ चीज़ें हुई कि
0: बिस्मिल्लाह
1: नहीं?
0: ही तवक्कल तो अल्लाह।
1: फिर डिपेंड करता है कि केड़ी तवक्को, फ्री दी तवक्को या मदद करने दी तवक्को, ये प्रॉब्लम है ना अगली।
0: देखे अल्लाह से मांगी है ना तवक्कल, अल्लाह की तवक्कल पे निकले हैं, कुछ
1: बिल्कुल,
0: मुफ्त ला बजाय तां ते जे लाना पै
1: तो
0: जाता।
1: तामी कोई मसला नहीं, ये तो है वैसे, आई एग्री विद यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, उम्मीद जो है ना ये एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है, उम्मीद जो है ना इंसान को बहुत बहुत दूर तक ले। रोज़ाना वैसे हम उम्मीद पे ही जीते हैं, कल बेहतर होगा, कल बेहतर होगा। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई किसी चीज़ की लड़ाई रख रहा है। हाँ, लेकिन सबको ये ज़रूर कहूँगा, अल्लाह पे उम्मीद रखो, इंसानों पे नहीं। अल्लाह से उम्मीद रखो, इंसानों से नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्मीद तोड़ने वाले हमारे ही अपने रिश्तेदार इंसान यही होते हैं। सबसे ज़्यादा उम्मीद ये तोड़ते हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये देते हैं। तो उम्मीद रखनी है तो अल्लाह से रखो, तवक्को रखनी है तब भी अल्लाह से रखो।
0: अहमद आई जे
1: अल्लाह खैर करे, मोकल आज जोशा
0: मक्कल
1: चल
0: आए जे, कहंदे
1: रहा,
0: ने
1: मोकल लगता है रेड बुल पी के आए ने आज।
0: वो मैंने भी कभी किसी को आजमाया नहीं,
1: अच्छा,
0: मैंने भी किसी को आजमाया नहीं, जितना प्यार दिया इतना पाया नहीं,
1: हाय हाय हाय हाय,
0: किसी को फिक्र हो मेरी शायद, खुदा ने मुझे ऐसा बनाया
1: बनाया ही
0: नहीं।
1: नहीं, हाय हाय हाय हाय हाय,
0: जे बनाया होता ना तो कोई शवारमे दे पैसे आ जाते।
1: आ जाने, बिल्कुल मैं इस काबिल ही नहीं है कि मेरे मुंह शवारमा जाए, ता ही नहीं आया आज तक।
0: तुसी दाल खाओ।
1: दाल भी मज़े दी होंगी यार, उबले चावल ना पराठे ना, हाँ हाँ हाँ नाल चार, दाल भी मज़े दी होंगी। असं जो लाभ जाए अल्लाह ताला तो शुक्र करके खा लेने, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाई चांस अगर कुछ फ्री लाभ जाए तो ना नहीं करेंगे।
0: अच्छा खाने से याद आया,
1: अल्लाह खैर करे।
0: वो एक बंदा था,
1: हाँ जी,
0: वो गया अपने ससुराल गया,
1: हम्म,
0: तो माँ अपनी जो है बेटी है उसको कहती है बेटा वो ज़रा दाल बनाओ है ना, मुर्गी बनाओ। तो मुर्गी बना रही होती है तो फिर उसको आवाज़ देती है, बेटी एक जग पानी का डालो।
1: अल्लाह खैर करे।
0: अच्छा फिर थोड़ी देर गुजरती है, फिर कहती है बेटी एक जग पानी का और डालो। तो वो जो दमाद साहब आए होते हैं ना, वो कहते हैं अम्मा असी मुर्गी खानी है, डुब के नहीं मरना।
1: वो शोरा इतना हो गया कि दोए बोटियां ते पैरा रख के नवाला लाना पे, इतना शोरा है।
0: इतना शोर।
1: क्या बात है, इतना मैनू वो आमद आ गई, मैनू भी
0: उई
1: आमद आ गई
0: उई
1: पीरो जी, मैनू भी गल ते ना इस गल तुहाडी इस गल तो मैनू एक गल याद आ गई।
0: जी।
1: ठीक है जी, सास ने पूछा अपने दामाद से कि
0: अच्छा
1: बैंगन शरीफ पकाऊं
0: आहा
1: या पिंडी मुबारक
0: आहा
1: या पालक पाक खाना पसंद करेंगे। दमाद अगू कहंदा है कि बोला मैं गुनाहगार बंदा हूँ, बगैर वुजू इन मुकद्दस सब्जियों का नाम जो है मैं नहीं ले सकता,
0: माशाल्लाह।
1: तो आप ऐसा करें कोई बगैर सा मुर्गा ही पका
0: आहो कोई पिंडी शरीफ है
1: असि उस कैटेगरी, सानू बगैरत मुर्गा,
0: वाकई मुर्गा जो है सारी दिहाड़ी लूर लूर गलियों में फिरता रहता है।
1: यस,
0: यस
1: कोई सुकी सुती बिल्ली यह जी चीज़ा पका दो सानू, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी बड़िया चीज़ा नहीं सानू चाहिए। मतलब पिंडी इन्नी जी पिंडी, तो पिंडी शरीफ कहो तो बंदा कहता वो यार कितनी बड़ी चीज़ होगी।
0: अच्छा बाबे फूके आज की खाइए ते की पकाइए।
1: ओ यार पिछले याद आया, पिछली बारी मेन्यू दिता सी, लोगों ने उहदा कोई फीडबैक नहीं दिता, बस
0: फीडबैक यूं आया है कि
1: आया
0: जी जी आया आया है,
1: कोई पसंद आया लोगों
0: वो
1: को,
0: कहते हैं कि जी
1: मसला हल
0: आपने
1: हुआ
0: कुछ तो हमारी जो है ना मुश्किल आसान की है।
1: जबरदस्त है, चलो यही मकसद था हमारा।
0: पर उसमें फिर ये हुआ कि एक बताते हैं कि उन्होंने जब वो मेन्यू बनाने लगे उसमें भी थोड़ी जो है उन्होंने रद्दबदल करने की कोशिश की,
1: चलो कोई
0: तो
1: बात
0: जब
1: नहीं,
0: बेगम ने खावन से पूछा कि मैं कौन से चावल बनाऊं,
1: जी
0: तो खामन ने कहा कि जी आप जी उबले चावल बना लें,
1: जबरदस्त,
0: तो कहती हैं नहीं
1: नहीं क्यों?
0: मैं पुलाव जो है वो चने वाला बनाऊं या मटरों वाला बनाऊं। तो खामने कहा जब

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़सामीन, आप रेडियो हम वतन की उर्दू नशरियात बराह रास्त रेडियो वेस्टर्न के स्टूडियो से और नई दुनिया के प्लेटफॉर्म से देख और सुन रहे हैं। सामीन और नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम कुछ यूँ हैं कि अभी मैं बिस्मिल्लाह करां प्रोग्राम लेके हाज़िर हूँ और मेरे साथ स्टूडियो में PTI के सबका सदर जनाब आतिफ इलियास तशरीफ़ रखते हैं। उनसे धरने के हवाले से जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके हवाले से और डेनमार्क में उसके हवाले से बात करेंगे। समीन नाजरीन, हसब मामूल 12 से 1 बाशी के संग और 1 से 2 बजे बाबे फूके दियाँ फूकाँ जो है वो प्रोग्राम लेके हाज़िर होंगे। आज भी आपके लिए दिलचस्प और हंसा मजाक लतीफ़े जो हैं वो लेके हाज़िर होंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं बिस्मिल्लाह करम प्रोग्राम, जिसका मेज़बान मैं रज़ा मुस्तफ़ा और मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब आतिफ इलियास साहब। उनका शुक्रिया कि उन्होंने एक तो शॉर्ट नोटिस पे जो है वो दावत कबूल की और दूसरा यहाँ पे तशरीफ़ लाए। वक्त हमारे साथ इनके साथ थोड़ा सा मुख्तसर होगा क्योंकि इनकी थोड़ी सी मसरूफियात हैं तो जाएंगे ये, लेकिन चंद सवाल और जवाब इनसे लेंगे। सबसे पहले आतिफ भाई, माजरत के साथ ये माइक का आपके सामने पड़ा है, साथ में थोड़ा सा और वे लर्निंग तिसली लिख ले,
2: इधर
1: लगा लें। चलें जी, बहुत शुक्रिया, वेलकम और खुश आमदीद आपको अपने प्रोग्राम में कहते हैं। आतिफ भाई, ये बताइएगा कि PTI की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में उसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जो हो रहा है दुरुस्त हो रहा है?
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब सामईन को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले रज़ा भाई आपका शुक्रिया, आपने दावत दी और अपने पॉइंट्स का इधर ज़ाहिर ख्याल करने का मौका दिया। जनाब, जो कुछ हो रहा है वो आप तो देख रहे हैं कि बहुत सरासर ज़्यादती और गलत हो रहा है, और ये 3 साल से जो भी बर्बरियत का और जुल्म का जो निज़ाम चला हुआ है इसकी मिसाल पाकिस्तान की पूरी तारीख में नहीं मिलती। और जिस तरह एक नई इन्होंने करके माओ बहनों को भी घर से निकाला, हमारे सियासी वर्कर भी जो है इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं, और जो आपकी अभी लेटेस्ट अगर आप पूछना चाह रहे हैं जो फ़िलहाल जो पाकिस्तान में है, मुल्क जो है हमारा काफ़ी पीछे चला गया है, और ये जो जुल्म और क्या नाम है जुल्म की दास्तान लिखी जा रही है इसकी मिसाल पाकिस्तान की पूरी तारीख में नहीं मिलती।
1: तो आतिफ भाई, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप है, आपके जो चेयरमैन है वहाँ पे और दूसरे जो अहदेदारान हैं, क्या आप यहाँ पे रहते हुए डेनमार्क में समझते हैं कि उनकी जो कारकर्दगी है पाकिस्तान में वो ठीक है, और जो तहरीक चला रहे हैं या PTI के हवाले से जो फैसले किए जा रहे हैं वो दुरुस्त हैं?
2: सर, बात यह है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी और हमारी ओवरसीज़ लीडरशिप का मतलब है कि जैसे हम डेनमार्क में हैं, नॉर्वे में हैं, इंग्लैंड में, जो भी यूरोप में जो सियासी हमारी जो पार्टी के वर्कर्स हैं, हम अपनी पार्टी के चंद साथियों के साथ उधर कॉन्टेक्ट में हैं, रबते में हैं, लेकिन इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं बहुत स्लो और आस्ता स्लो प्रोसेस में जा रही हैं, और हमारे जो इधर क्या नाम है एतराज़ात होते हैं वो उनको अपना एतराज़ात रिकॉर्ड कराते रहते हैं, लेकिन अभी जो अभी एक मूवमेंट जो चली हुई है तो हमारी क़यादत भरपूर अब खान साहब के हुक्म पे कोशिश कर रही है कि अब इसका कोई नतीजा निकले, और हमारा भी इधर से भरपूर एक किस्म का क्या कहते हैं कि प्रेशर है उधर, और उनको भी पता है कि अब ये बात ज़्यादा तक चली नहीं गई। जो इनकी इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पार्टी के जो पाकिस्तान के जो हैं उनकी भी मिली जुली भुगत, और ये क्या नाम है, इसी वजह से हम जो उन्होंने उनके साथ क्या नाम है डील्स की हुई हैं इसकी वजह से हमारा काफ़ी प्रोसेस हम पीछे गए हैं। अगर वाम और ये लीडरशिप सही काम करती तो ये 3 साल खान साहब अंदर जेल में ना होते।
1: तो अगर मैं आपको सही समझाऊँ तो आप समझते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं, कोई जो उनके साथ मिले हुए हैं और कुछ तो मजबूर है, क्योंकि ऐसी भी बातें होती हैं कि आप तो जी यूरोप में रहते हैं आप कुछ भी कह सकते हैं, अगर आपने कुछ कहना है तो पाकिस्तान आएँ और वहाँ पर कहें, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूम है तो आप हाल में पाकिस्तान भी गए थे।
2: जी सर, अभी मैं पाकिस्तान हो गया हूँ, और ये इसमें कोई बात नहीं है कि कंप्रोमाइज्ड हैं और कोई मजबूर भी हैं। सर देखें, जिन्होंने पाकिस्तान में रहना, जो मुल्क से निकल गए हैं, काफ़ी हमारे जो पीटीआई के वर्कर हैं वो मुल्क से बाहर भी दर बदर धक्के खा रहे हैं, लेकिन जो हैं कुछ तो खड़े हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि कुछ कंप्रोमाइज्ड हैं, उनकी मजबूरियाँ हैं, हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। खान साहब ने कहा उनको ब्लेम ना करें। जब माओ बहनों पर बात आती है तो अच्छे अच्छे जो हैं वो दलेर भी गिर जाते हैं, घुटनों पर आ जाते हैं। खान साहब ने भी अपने कई दफ़ा कहा है कि आप उन लोगों को मजबूर ना करें जो पार्टी के साथ नहीं चलना चाहते या वो नहीं कर सकते, उनकी मजबूरियाँ हैं, उनको ट्रोल ना करें। लेकिन जिसने पार्टी का झंडा उठा लिया है या उसने क़यादत ले ली है, तो फिर हमारा भी यही एक डिमांड है, हमारी एक ही डिमांड है कि फिर पार्टी का झंडा उठा के फिर आपको कुछ भी हो जाए फिर आगे बढ़ना चाहिए, अवाम को एंगेज करना चाहिए, पब्लिक को एंगेज करें। मसला यही हुआ है कि हमें जो पाकिस्तान की जब कंप्रोमाइज लीडरशिप हो जाती है तो फिर आप अवाम को एंगेज नहीं कर सकते।
1: अच्छा आतिफ भाई, ये भी होता है कि जब अगर मेरे पास वो सकत नहीं है बोलने की और आप बोल सकते हैं, तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं कुर्सी आपको दे दूं। अगर मैं मजबूर हूं, मैं कंप्रोमाइज्ड हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं समझता हूं कि वो बोझ मेरे कंधे नहीं बर्दाश्त करते, तो क्या मुझे वो अपनी कुर्सी, अपना माइक, अपनी जगह जो है किसी और को नहीं देनी चाहिए जो आके वो आवाज़ जो है वो उठा सके?
2: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है सर। अगर आप में वो ताकत और वो हिम्मत नहीं रही, अगर आप खान साहब के लिए कुर्सी पर बैठे हैं तो फिर आपको ये क्या नाम है स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए बैठे हैं तो फिर आपको कुर्सी खाली कर देनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है।
1: अच्छा, यहाँ डेनमार्क में भी हमने देखा है कि पीटीआई के जो अहदेदारान रहे हैं, अभी तो मेरे ख्याल में आपकी कोई बॉडी यहाँ पर नहीं है क्योंकि आपके इंटर पार्टी इलेक्शन जो हैं वो डेनमार्क के नहीं हुए, लेकिन जब भी हमने देखा है कि पाकिस्तान एम्बेसी के सामने जो है वो कोई एहतजाज होता है, तो वहाँ पे जितने भी पीटीआई के अपने लोग जो दूसरे जगह पे अपना नाम पीटीआई के साथ मुंसलिक करते हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं होते, वो अपने जो हैं वो कहीं और पे। क्या पीटीआई डेनमार्क में भी मुख्तलिफ धड़े हैं बने हुए?
2: सर पहली बात तो ये है कि आपने हमेशा, हम जब भी कोई पार्टी से पीछे कॉल आती है तो हम हमेशा हमारा होता है कि हम उस चीज़ को इधर भी आके लेके चलें और हम प्रोटेस्ट करें। हमारी पहली तरजीह होती है या गोल्स प्लेस या एम्बेसी, लेकिन एम्बेसी इसलिए हमारी ज़रूरी होती है कि एम्बेसी में हमारा एक हक है कि एम्बेसी के आगे हम करें। वो एम्बेसी जो है सब की एक क्या नाम है, आप कह रहे हैं सब पाकिस्तानियों की है और हम भी पाकिस्तानी हैं, हम हमेशा एक पुरमन उधर एहतजाज करने की कोशिश करते हैं। हम एम्बेसी से लड़ने नहीं जाते, हम अपना रिकॉर्ड, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने जाते हैं। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आपने हमारी लीडरशिप की तो बात की है, हम जब प्रोटेस्ट कोई अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो लीडरशिप है, हम उनको कॉन्टैक्ट करते हैं कि हम इसको किस तरह अमल में लाएँ। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं

0: वो इस तरह हमें पेश करते हैं जैसे हम इधर दहशत गर्द हैं। हमने तो कभी जाके उधर एम्बेसी में जाके कोई लड़ाई नहीं की, उनको गालियाँ दी, हमने एक पुरअमन एहतजाज और रिकॉर्ड करते हैं कि आप हमारा ये एहतजाज पाकिस्तान तक पहुँचाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे में कुछ बंदे हैं और आप भी जानते हैं, जो उधर नहीं आते वो इनके साथ बैठ के चाय पीते हैं, इनके पास इनके ताल्लुकात हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम जब भी प्रोटेस्ट अरेंज करते हैं इनको हमेशा हम कॉल देते हैं, लेकिन वो ना आए, फिर उनकी अपनी मर्जी।
1: अच्छा, कुछ लोग जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान एम्बेसी के सामने हम वहाँ उनके साथ लड़ने तो नहीं जाते, लेकिन आप एहतजाज जब करते हैं, तो मुझे याद है 2014 में एक यहाँ पर तंजीम बनी थी पाकिस्तान कम्युनिटी फोरम, और उसमें जितनी भी पाकिस्तानी जमातें थी, सियासी हों, समाजी हों, मसाजिद हों, वो सब उसमें शामिल थे। और उस वक्त जो इशू था वो ये था कि हमें रीडेबल पासपोर्ट जो है उसकी मशीन यहाँ कोपनहेगन में चाहिए, ताकि हमें नॉर्वे जाके वहाँ से पासपोर्ट ना बनवाना पड़े। तब हम जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी के सामने एहतजाज भी करते थे, हमें अच्छा भी लगता था, वो जमहूरी भी था, वो ठीक भी था, और यहाँ तक कि 14 अगस्त वाले दिन हमने वहाँ पे किए हैं। लेकिन आज जब पीटीआई वाले अपने हकूक़ के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो उनको जो है वो मुल्क दुश्मन भी कहा जाता है, उनको जो है वो गैर जमहूरी भी कहा जाता है, और जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है मुहिम चलाने और पता नहीं रॉ का जब हम, एक तो ये हम, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब हम किसी को गद्दार, मुल्क दुश्मन, रॉ का झंडा, हम फजूल में जो है वो लेबल लगाते जाते हैं। तो उसमें और आज क्या फ़र्क है उन लोगों में जो पहले समझते थे कि ये दुरुस्त है पाकिस्तान एम्बेसी में जो है वो जमहूरी हक है करने का, और आज जो वही लोग जो हैं वो कहते हैं कि गैर जमहूरी है?
0: सर ये देखें, जब भी आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं वो कभी भी गैर जमहूरी नहीं होता। एक डेमोक्रेटिक तरीका, जब जिस माशरे में हम रहते हैं एक छोटी सी भी बात हो जाए तो उधर एक आवाज़ उठाई जाती है और उसको सुना जाता है, आगे तक लेके जाया जाता है। और इसी तरीके से जब देखें हम इधर सारी ऑर्गेनाइजेशन, इधर सारी पाकिस्तान की, हम पाकिस्तानी हैं और कुछ भी हम कर लें, हम अपना नाम से पाकिस्तानी तो नहीं हटा सकते, डैनिश पासपोर्ट ले लें। लेकिन जब आपकी अकीदत और आपका कोई नज़रिया हो, जिस तरह आप पाकिस्तान से तो हट नहीं सकते, नज़रिया भी नहीं हटा सकते, और हमारा जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, जब आप इस सिस्टम में पले बड़े हों, तो जब आप पाकिस्तान में देखते हैं जिस तरह सिस्टम और जिस तरह वो पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे जा रहा है, तो आप यही चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी इन मुल्क की सरफरिस्त में आए, ऊपर हमारा मुल्क हो। और जिस तरह हमारा जो मशहूर हमने अपने लीडर जो खान साहब, हमेशा पाकिस्तान को सबसे आगे रखा है, तो अब अगर हम अपने राइट्स के लिए और एक जो बेगुनाह लीडर को अंदर रखा गया है और ना अदालतों में इंसाफ मिल रहा है, ना ये जिस तरह ये जुल्म करके हमारे सियासी जो लीडरशिप है आधे से ज़्यादा वो जेलों में रखी हुई है बेगुनाह, ना केस अदालत में सुने जाते हैं, हमारा तो यही एक एहतजाज होता है कि हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कराएं और आगे तक लेके जाएं, ये आगे तक लेके जाएंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सोचते हैं।
1: अच्छा आदर भाई, मैं अक्सर जो है वो सोचता हूँ कि जिस तरह हम जब भी पाकिस्तान की बात करते हैं तो जो दूसरी पार्टियों के या दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी आप पीटीआई के हैं, तो जब मैं उन्हें कहता हूँ कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं एज ए पाकिस्तानी पाकिस्तान की बात करता हूँ, और उसमें फिर मुझे ये समझ आती है कि इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान की बात करते थे, तो इसलिए ये लोग समझते हैं कि जो भी पाकिस्तान की बात करेगा वो इमरान खान या पीटीआई के साथ होता है। तो मेरा ये समझना है कि पाकिस्तान में या यूरोप में ओवरसीज जितने भी पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। अगर आज नवाज शरीफ या पीपल पार्टी या नून लीग जो भी है पाकिस्तानी जमात, अगर वो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाने की बात करें और सही इकदाम, सही जमहूरी तरीके से काम करें, तो मेरे ख्याल में जो कहते हैं ना कि ये 90% जो लोग यूरोप में रहते हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तान दुनिया भर में रहते हैं वो सब इमरान खान के साथ हैं, वो इनके साथ भी हो सकते हैं। शर्त यह है कि ये पाकिस्तान की बात करें। मैं ये इस बात के समझने के कितना दुरुस्त हूँ?
0: सर आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बात ये नहीं है कि हम नवाज शरीफ के खिलाफ हैं या इमरान खान के साथ हैं। जो बंदा एक बात करता है, पहले मैंने जब बताया आपको कि जब हम इस माशरे में पले बड़े हैं, हमने ये एक सिस्टम देखा है, तो हम चाहते हैं ये सिस्टम पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो। और वो जो सिस्टम जो आपने देखा है, ये नवाज शरीफ जरदारी 40-50 साल से हमारे मुल्कों में राज कर रहे हैं। क्या हो रहा है, एक बंदा काम पर जाता है सुबह और शाम को, उसको ये नहीं पता नहीं उसने दो वक्त की।
2: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84, ईमेल radio@snipelife.com।

0: मेरी जिंदगी थी वो,
1: मेरी जिंदगी है तू,
2: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
3: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84। ईमेल रेडियो स्नैपलाय हम वतन फुंगचम तीखो। हमारी वेबसाइट है हम वतन फुंगचम तीखो।
4: वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे और सुख का आंचल छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी, वो सुख कभी तो आएगी जिस सुख की खातिर हम जुग जुग से सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुख के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं। इन भूखी प्यासी राहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुख कभी तो आएगी। माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तोली जाएगी, वो सुख कभी तो आएगी। दौलत के लिए जब औरत की इस्मत को न बेचा जाएगा, चाहत को ना कुचला जाएगा, गैरत को ना बेचा जाएगा, निकाले करतूतों पर जब ये दुनिया शर्माएगी, वो सुख कभी तो आएगी। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख के और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो बुत आखिर दौलत की अजारादारी के, जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी, वो सुख कभी तो आएगी। मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों की धूल न फांकेगा, मासूम लड़कपन जब गंदी गलियों में भीख न मांगेगा, हक मांगने वालों को जिस दिन सूली ना दिखाई जाएगी, वो सुख कभी तो आएगी, वो सब कभी तो आएगी।

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम।

वालेकुम। 11 अक्टूबर पाकिस्तान में इतवार की सुबह आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 316। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में बदलती हुई सूरत हाल। एक तरफ तो लॉन्ग मार्च जो है वो अपने हतमी नताइज की तरफ जा रहा है या उस तरफ बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसने अपनी ही मुंतखब हुकूमत के खिलाफ अब बगावत का अलम जो है वो बुलंद कर दिया है। मिलिट्री जर्नल्स जो हैं वो सामने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को रख रहे हैं, जो उन्होंने वहां पर एक स्टूज किस्म का आईजी लगाया हुआ है उससे वो तमाम काम करवा रहे हैं। और वो जो बातें हमने आपके सामने कही थी, जो कुछ लोगों को नापसंद भी आई क्योंकि कई दफा हमारे और आपके या कुछ और दोस्तों के चीजों को देखने में फर्क होता है, जहां से हम देख रहे होते हैं और जहां से आप, हम भी गलत हो सकते हैं इसी तरह आप भी गलत हो सकते हैं। बहरहाल पहले खबर ये रखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने क्या किया है, फिर इमरजेंसी कह रहे हैं कि अगले चंद घंटों में लग जानी है, और कुछ कहते हैं कि चंद जिलों में, कुछ कहते हैं कि पूरे सूबे के अंदर ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्या सुहेल अफरीदी को तब्दील किया जा रहा है? क्या उनकी जगह पर शफी जान, मीना खान अफरीदी या कोई और चीफ मिनिस्टर आ रहा है? इन सब सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वेस्ट ने एक डिफरेंट कलर की चाय बना के पेश की है, एक डिफरेंट कलर की धुन बनाई है उन्होंने इंडिया के लिए। इंडिया में जो मुजाहरीन को डिटेन किया गया, गलत किया गया, लेकिन किसी के सर में गोली नहीं मारी गई, किसी को लाठी नहीं मारी गई, और उनके जो मेन लीडर्स थे उनको भी शाम को ही रिलीज कर दिया सवाए 3-4 के। उसके बावजूद यूनाइटेड नेशंस ने फौरी एक्शन लिया है और उनसे कहा है कि तमाम डिटेनीज जो हैं उन्हें छोड़ें, जमहूरियत की प्रोटेक्शन करें। पूरी दुनिया का मीडिया उन्हें कवरेज दे रहा है, लेकिन इमरान खान के जो फॉलोअर्स या पाकिस्तानी हैं वो सरों में गोलियां खाने के बावजूद इस तरह का प्यार, इस तरह का एहतराम या इस तरह की केयर या इस तरह का एहसास जो है वो ना यूएन से हासिल कर सके, ना ही वेस्टर्न वर्ल्ड से हासिल कर सके। इस मामले को भी देखेंगे। पहले जरा आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने एहतजाज और मुजाहरों से निपटने के लिए जिलाई पुलिस अफसरान को हदायत जारी कर दी। उन्होंने कहा कि एंटी रॉइट स्क्वाड जो है उसको, स्पेशल स्क्वाड जो है उसको इस्तेमाल करें, सादा लिबास अहलकार तैनात करें, थानों, सरकारी अमलाक, पेट्रोल पंप्स और बैंकों की सिक्योरिटी बढ़ा दें। उसके साथ वो कहते हैं कि अगर इज्तमात पहले बातचीत करें, अगर मसला हल नहीं होता तो फिर हवाई फायरिंग और रबर की जो गोलियां हैं वो भी इस्तेमाल करें, मुजाहरीन की वीडियो रिकॉर्डिंग करें, निगरानी करें, जिले इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों से राबता बेहतर करें। और ये तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने जिलाई जो पुलिस अफसरान है उन्हें कहा है कि तुन के रख दें, मतलब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही अपना आईजी जो है खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का वो ये अहकाम दे रहा है कि मुजाहरीन को डंडा फेरें, रबर की गोलियां भी मारे मारने की जरूरत है और तुन के रख दें जहां रखने की जरूरत है। ये रिटन अहकाम जो है इन राइटिंग में तहरीरी तौर पर ये तमाम पुलिस अफसरान को पहुंचा दिए गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट पर। मतलब कि आईजी जो हैं वो बेलगाम हुए खड़े हैं अपने ही सूबे की जो हुकूमत है उसके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं किस्म का। आपको पता है कि अभी तक 8 मेंबर सूबाई असम्बली और 3 मेंबर कौमी असम्बली जो हैं, 11 लोग जो हैं और उसके अलावा वर्कर्स तो बेतहाशा हैं, लेकिन 11 मेंबरान असम्बली जो हैं वो इसी सूबे में अगवा हो चुके हैं और आईजी ने उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन ये कहना गलत होगा, आईजी ने बिल्कुल उनकी सिक्योरिटी के लिए किया है, क्योंकि अब खबर ये आई है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के आईजी ने पुलिस को ये अहकाम दिए हैं कि जितने भी एमपीएज या मिनिस्टर्स के पास पुलिस की सिक्योरिटी है, तमाम सिक्योरिटी अहलकारों को ये अहकाम दिए हैं कि इनकी सिक्योरिटी छोड़ के वापस पुलिस लाइंस में रिपोर्ट करें। मतलब कि तमाम मिनिस्टर्स और जिनके पास भी सिक्योरिटी मौजूद थी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में सवाए गालिबन चीफ मिनिस्टर के, तमाम की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और उनको बेयारो मददगार छोड़ के पुलिस जो है वो वापस पुलिस लाइंस चली गई है। कैन यू बिलीव इट? जी हाँ, ये जहां पर 2/3 मेजॉरिटी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहां पर ये हो रहा है। जनरल्स पश्तूनों के साथ वही खेल खेल रहे हैं जो इन्होंने बंगालियों के साथ खेला था। इनको ये समझ नहीं है कि जब सियासी जो लोगों के एहसासात होते हैं, मुहरकात होते हैं, या सियासी तौर पर आप किसी को डिप्राइव करते हैं, उसके साथ साथ जब लिसानी मामला उसके साथ मिलता है, कौमियत मिलती है, तो ऐसे ही समझिए कि पेट्रोल और आग इकट्ठे हो जाते हैं।
बंगाल के साथ भी यही हुआ। अगर बंगाल में भी एक आध सूबा पंजाब या सिंध या कोई और कौमें उधर भी रह रही होती तो शायद आपके जुल्म में काफ़ी देर लग जाती, बचत हो जाती होंगे। उधर सारे ही वो मतलब 90% या सारे ही उधर बंगाली रह रहे थे। एक तो आप उन्हें पॉलिटिकली डिप्राइव करते थे, आप उनकी सीटें नहीं दे रहे थे। फॉर्म 47 का आपने इलेक्शन के नतायज अपने बनाए। याया खान ने भुट्टो के साथ मिलके, भुट्टो को इस्तेमाल करके, लेकिन याया खान उस वक्त के आर्मी चीफ और उससे पहले अयूब खान, जिस तरह उन्होंने उनको दीवार के साथ लगाया। और दूसरा वो एक कौम थी। तो कई लोग कहते हैं कि पंजाब में लोग नहीं निकलते, फलां जगह लोग नहीं निकलते, उसकी वजह कश्मीर में कहते निकलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत निकलते हैं, उसकी वजह है कि जनरल्स को भी इस बात की समझ है। ये जो BLA है, दहशतगर्द तंजीम, वो क्या लिखते हैं, बलोच लिबरेशन फ्रंट, या जो भी उन्होंने बनाया हुआ है BLF, या जो भी उन्होंने वहां पर डिफरेंट नामों से दहशतगर्द तंजीमें जो बनाई हुई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब कौमियत साथ मिल जाती है सियासी महरूमी के, सियासी नाइंसाफी के, तो फिर वो एटम बम बन जाता है। वो एक ऐसी चीज बन जाती है जो किसी के कंट्रोल में नहीं रहती। मिलिट्री जर्नल्स को मुझे लगता है, अभी भी लगता है, इतनी ज्यादा इनकी बेवकूफियों के बावजूद, मुल्क तोड़ देने के बावजूद, मुझे लगता है कि शायद इस बार ये होश के नाकुल लें और ये पश्तूनों को, जहां पर सियासी महरूमी पहले से मौजूद है, जहां पर उन्हें यह लगता है कि उन्हें उनके जो जखायर हैं, मादनियात, वहां भी आप लूट रहे हैं, उनके पानी के जखायर के भी आप उन्हें पैसे नहीं देते डैम्स के, उन्हें वैसे भी तरक्की में जो बराबर का हक है वो आप नहीं देते, उन्हें आप दहशतगर्द की नज़र से भी देखते, तो पहले से ही वो वूंडेड है, जख्मी है, पहले से ही उनके दिलों पर जख्म लगे हुए हैं आपके खिलाफ। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप उन पर गवर्नर राज या एमरजेंसी नाफिज करेंगे, या ये काम जो आप पुलिस से करवा रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी वापस लेंगे, तो यकीन करें वो इतने छितर मारेंगे पूरे पाकिस्तान के बाकी हिस्सों को, फिर और सबसे पहले आपको मारेंगे, जाहिर है कि लाल करके रख देंगे, यकीन करें। बंगाल में मैंने कल भी अपने एक ट्वीट में कहा कि बंगाल में किस्मत ये खराब थी या अच्छी थी कि बॉर्डर के ऊपर इंडिया था, और जाहिर है कि उन्होंने इंडिया को फिर इनवाइट किया, क्योंकि आपने मेरे ख्याल में तो उनके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने आपकी बार बार मिन्नत की, 25 जो मार्च को 23, 24, 25 जब आपने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, तो उस वक्त तक हालात आप इतने खराब कर चुके थे कि आपको अंदेशा यह था कि अगर इसको हुकूमत दे दी तो यह वैसे ही अलहदगी डिक्लेयर कर देगा। शेख मुजीबुर रहमान की मैं बात कर रहा हूं। तो अब इस सारी सूरत हाल में वहां पर क्योंकि इंडियन बॉर्डर था साथ, तो फिर हमारे जो 90-95 हज़ार फौजी अफसरान और अहलकार जो वहां पर जिन्होंने हथियार डाले, उनको इंडिया साथ ले गया और बाद में मिन्नत समाजत करके हम उन्हें वापस लेके आए। यहां पर बॉर्डर साथ अफगानिस्तान के मिलता है। जो आप करने जा रहे हैं, पश्तून कौम को सिंगल आउट कर रहे हैं, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहे हैं, उनकी बात सुने बगैर उनकी 2/3 अक्सरियत की हकूमत, बिल्कुल वैसी ही अक्सरियत उनके पास है जैसी शेख मुजीब के पास बांग्लादेश के अंदर थी। आप उसका इनकारी हैं, इनकार कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम तुन के रख देंगे, तो फिर वापस वो तुन के रख देंगे, और जब वो तुन के रखेंगे तो मैंने कहा कि सात सरहद जो है वो अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान से जो आपने हालात इस वक्त बर्पा कर रखे हैं वो आपको भी पता है। अफगानिस्तान जाहिर है वहां से इंडिया को भी दाखिल करेगा, सब कुछ करेगा, और जब आप लोगों से उन्हें अपना हमवतन समझेंगे ही नहीं, उनके साथ आप इतनी दूर निकल जाएंगे दुश्मनी में, तो वो भी वापस आपको नहीं समझेंगे। ये समझिए कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान को जोड़ के रखने वाला एक ही शख्स है, और उसका नाम इमरान खान है, वाहिद लीडर है जिसकी प्रेजेंस पाकिस्तान के छह जो खित्ते हैं, चारों सूबे, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और साथ आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, एक ही लीडर है जो सभी जगहों पर मौजूद है, जिसका सभी एहतराम करते हैं, कहीं बहुत ज्यादा, कहीं थोड़ा कम, लेकिन सभी जगहों पर, और किसी का कोई ना एहतराम है ना कनेक्शन है इस तरीके से। अगर जरदारी साहब तो शायद अंदरून सिंध, दैट्स इट। नून लीग अब तो मेरा ख्याल शायद कहीं भी नहीं, अब तो जाति उमरा के अंदर भी शायद उनका वो एहतराम नहीं होगा, घर के अंदर। अब तो कैप्टन सफदर भी आपके सामने खुल के, जाहिर है कुछ तारीफें तो अपनी बेगम की वो करते हैं कि उन्होंने जीना भी है, लेकिन ओवरऑल आपको पता है कि वो क्या बातें करते हैं, तो उन बेचारों का एहतराम तो बचा नहीं। तो एक पार्टी आपके पास रह गई है जो मुल्क को जोड़ सकती है, लेकिन आप उसके दर पे हैं, आप मुल्क तोड़ना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो अब खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को इस्तेमाल कर लिया गया है, उससे अब बाबर सलीम सवाती साहब ने एक खत लिख दिया मरासला हंगामी तौर पर IG को कि ये आप गलत कर रहे हैं, कानून का हवाला दिया है। हाल ही में एक कानून भी पास हुआ था, उससे पहले के भी कवानीन है कि आप मेंबरान असेंबली से इस तरह से सिक्योरिटी वापस नहीं ले सकते। उन्हें इस चीज को याद करवाया है कि यहां से मेंबरान अगवा भी हुए हैं,
उनके लिए कुछ करने की बजाय आपने सिक्योरिटी वापस ले ली या सिक्योरिटी फौरन वापस कर दी। अब जरा हम पीटीआई के लिए तीन चार ऐसे अकाउंट्स, एक आध तो शायद गुमनाम है लेकिन एक दो लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है। एक उनमें शफकत चौधरी साहब हैं जो मुतद्दद बार पकड़े गए बेचारे, मुतद्दद बार उनको बहुत बुरा सलूक उनके साथ किया गया, अब दोबारा जमानत पे छूट के आए हैं। ये तीन लोग जो हार्डकोर पीटीआई अकाउंट्स हैं ये क्या कह रहे हैं इसके ऊपर, मैं सोशल मीडिया की सिर्फ बात कर रहा हूं। ये जरा देखिएगा, सबसे पहले अमान अफरीदी, वो कहते हैं सुभान अल्लाह, पख्तून के तमाम एमपीए से आईजी ने सिक्योरिटी वापस ले ली, हम चीखते रहे, उन्होंने चीखती लिखा हुआ है, जाहिर है वो जरा उर्दू थोड़ा सा हमारे पख्तून भाई डिफरेंट तरह से, वो कहते हैं अल्लाह ताला फरमाती है, हम कहते हैं अल्लाह ताला फरमाता है। तो बहरहाल ये तो किसी को भी नहीं पता कि अल्लाह ताला के साथ फरमाती लिखना या फरमाता, क्योंकि ये तो मुझे नहीं पता, उलमा कराम बता सकते, मेरे इल्म में ये नहीं है कि कैसे लिखना है। ओके, अल्लाह मियाँ तो सभी के अल्लाह है। तो पख्तून के तमाम एमपीज आईजीपी ने सिक्योरिटी वापस ले ली, हम चीखती रहे कि चलाते रहे कि कानून साजी करो, तरमीम करो, असेंबली का फ्लोर इस्तेमाल करो, लेकिन नहीं, कभी किसी को टाउट कहा, कभी किसी को एजेंडे पर कहा, कभी किसी को साजिशी कहा। कि जब हम कहते थे कि आप ये फौरी तौर पर कानून साजी क्यों नहीं करते, तो हमें ये सब कुछ कहते थे, वो कहते हैं आप भुगतो। आगे चलते हैं, स्पीकर खैबर पख्तून, ये सैफ अफरीदी, ये भी एक बहुत ही प्रो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकाउंट है, दिन रात ये भी तहरीक इंसाफ के लिए ही लिखते हैं। वो कहते हैं कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम सवाती साहब, आपके पास मजीद सुस्ती का वक्त नहीं, अब इसी वक्त असेंबली खोलें, अपना आईनी ताकत इस्तेमाल करें, पुलिस एक्ट में तरमीम करके आईजी और सेक्रेटरी को असेंबली बुलाएं। अच्छा, वैसे बाय द वे ये उन्होंने नहीं करना, ये वजीर कानून ने करना है, ये बिल जो है वो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने पुट अप करना है, वजीर कानून ने करना है, उसके बाद फिर स्पीकर का काम शुरू होता है, स्पीकर खुद से नहीं कर सकता। स्पीकर ने तो मेरे ख्याल में कोशिश की होगी, अभी इधर से बिल जो है वो वहां पर जो है वो नहीं जाकर जमा करवाया गया, मेरी जो इत्तलात है। शफकत चौधरी वो शख्स हैं जो कम अज कम दो दफा उनको गिरफ्तार किया गया, उनके घर से उठाया गया, ज्यादती की गई, मारपीट किया गया उनके साथ की गई, और अभी हाल ही में वो दोबारा जमानत करवा उनकी होके वो बाहर आए हैं। तो एक हार्डकोर पाकिस्तानी, नजरियाती पाकिस्तानी आप ये कह लीजिए, जो इमरान खान के नजरिए पर बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि पुलिस एक्ट पास होकर इस पर अमल भी हो जाना चाहिए था, जब आपको मालूम है कि आपका मुकाबला लाकानूनियत से है तो इसका सदेबाब भी सूबाई हुकूमत को करना चाहिए था, अब वक्त है सूबाई हुकूमत सूबे में अपनी रिट साबित करे, मुकाबला तो पहले से ही ऑन है। अगली खबर भी इसी से रिलेटेड है और वो है कि सुहेल अफरीदी लॉन्ग मार्च छोड़कर वापस वजीर आला हाउस पहुंच गए, कल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास तलब करने का अमकान, ये अली हसन कह रहे हैं, देखते हैं होता है इजलास या नहीं, लेकिन वो लॉन्ग मार्च को भी लीड कर रहे हैं, बहुत इफेक्टिवली कर रहे हैं, मैंने कल भी कहा बहुत ही बेहतरीन तकरीर कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से लीड कर रहे हैं, हमारी पूरी दुआ है कि वो इसमें कामयाब हों। लेकिन साथ साथ आपको याद होगा कि मैंने बार बार तवज्जो दिलाई थी, बार बार ये ओपन खत रखा था, उससे पहले भी कहा था कि लेजिस्लेशन पास करनी चाहिए, कई दिनों से मैं लगा, कुछ दोस्तों ने रابطہ किया, उन्होंने कहा गिल साहब आपके वीलॉग का मजा नहीं आ रहा, आप उम्मीद नहीं दे रहे, फलां फलां वीलॉगर को हम सुनते हैं वो उम्मीद देता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि झूठी उम्मीदें आपको मैं नहीं दूंगा, ये मेरा काम नहीं है, यहां से मेरा आपका जो रिश्ता है वो ये नहीं है कि जो नहीं मुझे नजर आ रहा मैं आपको वो बताऊं, क्योंकि मैंने आपको झूठी उम्मीद देनी है, और जब आप फिर धड़ाम करके गिरें तो आपको यह भी समझना आए कि कितना नीचे अभी गिरना है, मतलब कि कितनी पस्ती में हमें दोबारा जाना पड़ना है, कितना डीमोटिवेट होना है। तो जब आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करके बहुत ऊंचा ले जाके नीचे गिराया जाता है तो चोट भी उतनी लगती है। मेरा फर्ज है कि अगर मुझे सामने नजर आ रहा है कि हालात खास तरफ को जा रहे हैं तो मैं आपको पहले अवेयर करूं ताकि आप उतने डीमोटिवेट ना हो, ताकि दोबारा आपको उठाना जो है वो मसला ना बन जाए, मुश्किल ना हो जाए, क्योंकि मेरा मकसद आपको झूठी उम्मीदें और झूठा किस्म का माहौल बना के वाहवा करके इसने ठोक दिया, इसने बम निकाल के रख दी, इसने तबाह कर दिया, इसने फटे चुक दिए, ये सारा बहुत आसान है, बट दिस इज अनएथिकल। मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँगा जो मुझे लगता है, और मुझे गलत लग सकता है, ये बात बिल्कुल हो सकती है, मेरा तज्जिया गलत हो सकता है, मेरी रीडिंग सूरत हाल की गलत हो सकती है, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए कि जो मैं रीड करता हूं, जो मुझे पता है, जो मैं प्राइवेटली सोचता हूं और यहां कैमरे के सामने बैठ के आपको कोई और ही तस्वीर दिखाऊं। इसलिए मैं पिछले बहुत दिनों से कह रहा हूं कि पुलिस का ये एक्ट पास होना चाहिए, बार बार सवाल कर रहा हूं। फिर जो रिटायर्ड जज साहब ने पूरा एक
एक पूरा खत लिखा मुझे, और मैंने आपको पहले भी कहा कि खान साहब की मुझे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि वो मुझे जो भी भेजें वो मैंने आपसे शेयर करना है, मेरे पास ऑप्शन नहीं कि मैं वो शेयर करूं। कुछ दोस्तों ने कहा इस मौके पे नहीं करना था, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं, मुझे खान साहब ने कहा था ये जो भी चीज़ आपको भेजें ये आपने शेयर करनी है, और मैं यहां कैमरे पे ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इंशाल्लाह जब भी खान साहब से बात हो, कोई भी पूछे कि शहबाज गिल ने ये किया, तो वो बिल्कुल ओन करेंगे इस चीज को कि हाँ उस शख्सियत के बारे में मैंने उन्हें कहा था कि वो जो भी आपको भेजें आपने लोगों के साथ शेयर करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जब मैंने आपको कहा तो आप सब ने कहा कि ओहो, आप सबका मतलब बहुत सारे लोगों ने कि गिल साहब ये वाला टाइम नहीं, अभी जरा लॉन्ग मार्च पे फोकस करें। ऐसा थोड़ी है कि लॉन्ग मार्च पकौड़े निकल रहे हैं तेल में कि आप साथ पानी का गिलास नहीं पी सकते। मेरे ख्याल में पकौड़े निकालते हुए भी बंदा साथ पानी पी सकता है। इसी तरह लॉन्ग मार्च आप सारा दिन करें, सुबह के 2-3 घंटे में ये पुलिस का कानून भी पास हो सकता है। ये आप ही की प्रोटेक्शन है, आप ही के लोगों की बेहतरी है। याद कीजिए, लोगों ने कहा था कि पंजाब असेंबली तोड़ना बहुत गलत फैसला था। आप में से बहुत सारे ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि जाहिर है कि जब आप किसी चीज के भी एक्सपर्ट नहीं, मसला ये है कि जैसे डॉक्टर हैं उनको मेडिसिन का बहुत पता है, हमें तो पता नहीं, 5 साल पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती, फिर आप डॉक्टर बनते हैं। इसी तरह फाइनेंस के एक्सपर्ट्स जो हैं उन्हें सारी चीज़ों का पता है कि फाइनेंस ने कैसे मूव करना है, क्या होना है। इसी तरह आर्किटेक्ट्स को पता है, फिजिक्स के जो माहिर हैं उनको फिजिक्स का पता है। जो पॉलिटिक्स है ये गरीब की जोरू सबकी भाभी, सब समझते हैं कि हम इसमें एक्सपर्ट हैं। तो हमारा अब फील्ड ऐसा है कि इसमें सारे लोग ये समझते हैं कि जितना हमें पता है उतना ही उन्हें पता है। हालांकि ये भी एक स्पेशलाइज फील्ड है, इसमें भी जो लोग इस काम को करते हैं या जिनका एक्सपीरियंस है फर्स्ट हैंड, या जिन्होंने हुकूमत में वक्त गुजारा, इदारों के साथ काम किया, इदारा में सिर्फ फौज की बात नहीं कर रहा, पुलिस आ रहे ब्यूरोक्रेसी, हमें पहले पता चल जाता है कि मामला किस तरफ को जा रहे हैं और क्या हो रहा है। लेकिन मसला यह कि आप भी, और आप हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन आप समझते हैं कि आपकी राय जो है और एक बंदा जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है उसकी राय बराबर है। मैंने बताया ना, गरीब की जोरू सबकी भाभी, तो ऐसा नहीं होता। मसलन एग्जाम्पल देते हैं, इमरान खान ने जब असेंबलियां तोड़ी, अगर वो ना तोड़ते तो क्या होता? यही जो हमें मार कुटाई हुई 5 महीने के बाद हो जाती। अब आपने देखा ना कि आसिम मुनीर कितना खींच के लेके गए इसको, कितनी लेट तक। तो जो काम हमने 4-5 महीने पहले कर लिया वो 5 महीने बाद हमारे साथ हो जाता। अच्छा, फिर काजी फायदी साहब आ गए तो हमारी असेंबली ही नाइल करके वैसे ही तोड़ देते, वो हमसे हुकूमत ले लेते, गवर्नर राज लगा देते, जो आज कह रहे हैं पंजाब में तो लगाना, केपी में तो इनको छित्रों का डर है इसलिए नहीं लगा रहे, पंजाब में तो इन्होंने ऐसे लगाना था गवर्नर राज, पूछना भी नहीं था। तो लेकिन इमरान खान के उस असेंबली तोड़ने से हुआ क्या? सारा सिस्टम नंगा हो गया, एक कम चंगा कर गया, सारे अनु नंगा कर गया, मतलब के खान ने पूरे सिस्टम को नंगा कर दिया। पहले भी इन्होंने ये सारा काम करना था रख रखाव के साथ करना था, कोई तरीका वारदात निकाल के बीच में से, गवर्नर राज इधर उधर, करप्शन का केस बना दिया, वो कर दिया, अपोजिशन उठ खड़ी हुई। लेकिन इमरान खान ने असेंबली तोड़ के 90 दिन में इलेक्शन ना, कई जज उसमें बेनकाब हो गए, अदलिया हो गई, वकला हो गए, फौज के जनरल्स हो गए, अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, सब ने आइन शिकनी कर दी। अब जब भी कभी इंशाल्लाह वक्त बदलेगा तो जिस जिसने उसमें आइन शिकनी की हुई है उन सब पर आर्टिकल 6 लग सकता है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर आप बात करें तो यहां भी जाहिर दीवार पर लिखा हुआ है, इन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है कभी ना कभी, जब भी इन्हें पहला मौका मिला, अभी मिल नहीं रहा था या अभी भी शायद इनको खतरा है कि हमें मार पड़ेगी, माहौल बना रहे हैं पीटीआई को वहां हर तरह से बदनाम करने की, इन्होंने पूरी भरपूर कोशिश की है। मतलब क्या इन्होंने जीबी में खैर की, वहां पर इन्होंने नहीं छीना, रजीम चेंज नहीं की? क्या इन्होंने आजाद कश्मीर में रजीम चेंज नहीं की? तो आपको क्या लगता है इन्होंने केपी में क्यों नहीं की? छित्रों का डर था। वहां ये कोशिश कर रहे थे कि तहरीके इंसाफ को धीमी आंच के ऊपर, कई चीजें पकाते हैं ना धीमी आंच पे, पहले गंडापुर साहब के साथ, फिर सोहेल अफरीदी के साथ कोलैबोरेशन रखें, कहें इकट्ठे मिलके काम करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ये करते हैं, ताकि पख्तून अवाम इमरान खान की जो वहां पार्टी है, वोट बैंक है, उससे मुतनफर हो जाए, और जब पीटीआई वहां पर वीक हो जाए तो तब वहां पर रजीम चेंज कर दें। ये इनका प्लान था। ऐसे ही जैसे सांप बाहर से बहुत मुलायम है लेकिन वो आपके इर्द गिर्द घेरा डाल रहा है और आखिर उसने आपको डसना है, यही पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स भी कर रहे थे यहां पर खैबर पख्तूनख्वा में। तो अब आपको जब मैं ये बातें बताता हूं आपको बुरी लगती है, आप कहते हैं फलां बहुत उम्मीद देता है, आप उम्मीद नहीं देते, झूठी उम्मीद कैसे दूं मैं आपको? तो इसलिए कह रहा था कि ये पुलिस का काम करना चाहिए था। फिर आप कहते हैं कि जी कुछ लोगों ने मुझे अपने कॉमेंट्स भेजे कि गिल साहब क्या बातें करते हैं, आपको नहीं पता कि यहां पर वही होना है जो चौधरी चाहता है, मतलब जो जर्नल्स चाहते हैं वही होना है, तो अगर आप कोई कानून बना भी देते तो आप क्या तब्दील करते? ये बात आपकी बहुत हद तक दुरुस्त है इंडिविजुअल्स के मामले में, पब्लिक के मामले में नहीं,
इंडिविजुअल्स के मामले में। जैसे अगर आप मुझसे ये कहें कि सदर आरिफ अलवी बहुत कुछ कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, आपकी राय अपनी हो सकती है, मेरी राय में वो एक इंडिविजुअल थे, उनके पास ज्यादा स्पेस नहीं थी, दफ्तर में उन्हें लॉक करके वहां उन्हें कुछ सजा दे के उनसे वो जबरदस्ती साइन करवा सकते थे, क्योंकि आपके पास कानून कोई भी बना दे, चौधरी गुंडागर्दी करता है उसने वही करना है जो करना है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब पब्लिक एट लार्ज को आप इन्वॉल्व कर लेते हैं तो चौधरी भाग जाता है। पब्लिक एट लार्ज को जब आप इन्वॉल्व करते हैं तो चौधरी भाग जाता है। जैसे किसी कमरे में बहुत ठंड हो जाए ना तो मक्खियों की स्पीड कम हो जाती है, इसी तरह और भी बहुत सारे जानवर जो हैं, कुछ अंधेरे में बड़ा सफर करते हैं, कुछ रोशनी में सफर ज्यादा करते हैं और कुछ रोशनी को देख के भाग जाते हैं। चमगादड़ की आंखें रोशनी में बंद हो जाती हैं, पता है ना आपको इस बात का। अब मुझे बताइए, आपने गांव में अगर आप रहने वाले हैं तो आपने ठीकरी पहरा सुना हुआ है कि गांव के लोग लगाते थे और वो चोरों को भी पकड़ते थे, उनका मुकाबला भी करते थे। अब अगर आपने ये लेजिस्लेशन कर दी, एग्जांपल दे देता हूं, बात लंबी हो रही लेकिन जरूरी आपकी समझ के लिए कि मैं क्यों पुलिस के इस लॉ को बार बार तब्दील करने के लिए आवाज उठा रहा था। लाहौर में एक रिटायर्ड मेजर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, लोकल लीडर थे, उनके घर पर फस्ताइयत की गई, याद कीजिए 9 मई से पहले की बात है ये, जब इमरान खान साहब ने हुकूमत गिरने के बाद लॉन्ग मार्च पिशावर से इस्लामाबाद को निकाला था और हमारे कारकुन फैसल को लाहौर के अंदर शहीद किया था। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, ये जो अवायल थे आप ये कह लीजिए कि अप्रैल से जून के दरमियान या जुलाई के दरमियान 2022 की बात कर रहा हूं। तो एक घर में पुलिस ने चादर चार दीवारी पामाल की, मेजर साहब ने अंदर से बंदूक से, उन्होंने सोचा को डाकू आ गए, उन्होंने गोली चलाई, पुलिस वाला मर गया। मेजर साहब अभी भी कत्ल का मुकदमा भुगत रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी फिलहाल यही कानून है, लेकिन अगर कानून बदल दें आप, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली एक पास कर दे कानून, जैसे अमेरिका में बहुत सारी स्टेट्स के अंदर यह कानून है कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी, किसी के लॉन पर, किसी के घर पर, किसी के घर के फ्रंट दरवाजे पर उसकी इजाजत के बगैर जाएं और वो खतरा महसूस करे और वो आपको गोली मार दे, तो उसको प्रोटेक्शन है कि आप उसकी प्रॉपर्टी पर गए थे। अगर आप यही कानून खैबर पख्तूनख्वा में बना दें तो मैं आपकी बात मानता हूं कि फिर भी पुलिस चौधरी के कहने पर पकड़ लेगी जो गोली मारेगा, लेकिन क्या होगा, एवेंचुअली क्या होगा, 2 महीने 6 महीने साल, जब ये वक्त बदलेगा तो वो बंदा बाइज्जत बरी होकर बाहर आएगा, क्योंकि कानूनी तौर पर उसने गलत नहीं किया होगा कुछ भी, कानून ने उसे प्रोटेक्शन की होगी। तो जब आप खैबर पख्तूनख्वा में ये कानूनी प्रोटेक्शन देंगे तो आपको लगता है इकबाल अफरीदी किसी को आने देगा अपने घर में? आपको पता है ना कि वहां गुल खान के पास अंदर क्या क्या है, फिर क्या क्या चलेगा अंदर से। तो आपने पब्लिक एट लार्ज की आपने ताकत 8 फरवरी को नहीं देखी 2024 को? क्या जर्नल्स ने वही कर लिया जो करवाना चाहते थे? मार मार छितर उन्होंने धुआं नहीं निकाल दिया जिस तरीके से उन्होंने बैलेट पेपर्स के ऊपर मोहरें लगाई थी? और किसने, हमारी माओ ने, बहनों ने, बेटियों ने, औरतों ने, मेरा मतलब बदल के रख दिया, क्योंकि एक इज्तमाई इंपावरमेंट थी, एक बंदे की नहीं थी। आप जब पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इंपावर कर देंगे लोगों को कि आपके घर में कोई आए कानूनी तौर पर आप उसे गोली मार सकते हैं, अगर वो आपकी चादर चार दीवारी को पामाल करे आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। मैं देखता हूं ये कैसे जाते हैं लोगों के घरों में, ये आपको लगता है उसके बाद भी यही होना है? फिर अगर आप हर घर हर गांव में 20-20, 25-25, 50-50 लोगों की कमेटी बना दें जिसे गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन हो, वे इदारे के तौर पर काम करें, वो इनको फेंटा लगाएंगे गांव गांव गली गली, अभी नहीं लगाते। अभी आपको एक वीडियो दिखाते हैं, ये हरियाणा की, अगर मेरे एडिटर को मिल जाए, कल हरियाणा के लोगों ने पुलिस को यरगमाल बना लिया इंडिया के अंदर जब वहां गई। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत दफा हुआ है, कई जगहों पर ये पुलिस को, इवन मिलिट्री के लोगों को बिठा लेते हैं कि बैठ जा चांद, नहीं जाओगे तुम वहां का जिरगा, वहां के लोग कहते हैं कि बैठ के बात होगी। आप उन्हें एम्पावर करेंगे तो वो वापस, मैं ये नहीं कह रहा 100% वो वापस इनके हम पल्ला हो जाएंगे, इनके पास बंदूक है, टैंक है, तोप है, फाइटर जेट है, लेकिन काफी हद तक इनकी मंजी पीढ़ी ठोक के रख देंगे वापस वो। तो इसलिए आपको कहते थे कि जैसे इमरान खान ने 90 दिन में इलेक्शन के लिए जो असेंबली तोड़ी, उसके बाद ठीक है हमारे साथ जो कुछ होना था वो 5-6 महीने पहले हो गया, 5-6 महीने के बाद भी जब असेंबली ने अपनी मुद्दत पूरी करके जाना था तब भी यही होना था, 5-6 महीने पहले हमारे साथ वो सब कुछ शुरू हो गया, लेकिन इमरान खान ने सबको नंगा कर दिया, पूरा निजाम नंगा कर दिया। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी हमें फौरी तौर पर, आज भी वक्त है, सोहेल अफरीदी गए हैं तो पुलिस एक्ट भी पास करें, कमेटी जो इदारे बनाएं, मतलब पब्लिक की कमेटीज बनाएं जो अपनी प्रोटेक्शन करें शहरियों की, पब्लिक को राइट दें चादर चार दीवारी की कोई पामाली करे तो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ भी कर गुजरें, इस तरह के तमाम कवानीन पास करें। आप देखेंगे किस तरीके से मामला फौरी तौर पर काफी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा 100% रिजल्ट आएंगे, 10-20-30 और कुछ नहीं, नंगा करके तो जाएंगे ना आप, जाते जाते नंगा करके तो जाए ना कि क्या हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये अब जरा आ जाएं
گورنر راج کی تو یہ پشاور یونیورسٹی کے طلبہ نکل کر ممکنہ گورنر راج کے نفاذ کے خلاف شدید احتجاج نعرے بازی کر رہے ہیں، مطلب کہ لوگ وہاں پہلے ہی ریئیکٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. باب سوات، سوات کو جو راستہ جاتا ہے اس کو بند کرنے کے لیے کنٹینر پہنچا دیے گئے ہیں تاکہ وہاں سے لانگ مارچ نہ نکل سکے. مین شاہراہوں کو بند کرنے کا فیصلہ یہ سب پولیس کر رہی ہے، یہ سب پولیس سے کروایا جا رہا ہے. اگر آپ نے سوات کے شہریوں کو آج قانونی امپاورمنٹ دی ہوتی ایکٹ پاس کر کے اور ان کی شہری کمیٹیاں بنا کے تو شاید پھر بھی روڈ بلاک ہوتے، لیکن روڈ بلاک ہونے سے پہلے چتر و چتری کام ضرور ہوتا تھوڑا سا، کیونکہ قانونی ہوتا شہریوں کا وہ ریئیکٹ کرنا. آگے چلتے ہیں. پشاور میں پی ٹی آئی ایم این اے شیر علی ارباب کے گھر پر مبینہ چھاپا، شیر علی ارباب گھر پر موجود نہیں تھے، بچ گئے. پھر سہیل افریدی کہتے ہیں کہ ترکی تو یاد ہے نا، جب طیب اردوغان جو ہے حکومت گرانے کی کوشش کی گئی ان کی، عوام کا رد عمل آیا، انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں بھی ترکی کی یاد تازہ کریں گے، سہیل افریدی کہتے ہیں. پھر محسن نقوی رات گئے، وہ جو لڑکی بیچاری جس نے پھندا لگا کے اپنی زندگی ختم کر دی، اس کے ساتھ ویزا فراڈ ہوا تھا، اس کے گھر گئے اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو انصاف دلائیں گے. پہلے وہ بیچاری کو اگر کہیں انصاف کا ذرا سا بھی امید ہوتی تو اپنی زندگی وہ ختم نہ کرتی. وہاں پر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی نہ لگنے کی اب کوئی گنجائش نہیں، آپ لوگ بتائیں اب کیا گنجائش رہتی ہے. میں نے آخری حد تک کوشش کی لیکن میرے پاس کچھ نہیں. بیرسٹر گوہر سے بھی پوچھیں میں نے کیا کچھ نہیں کیا، وہ بیرسٹر گوہر کو اپنا گواہ بنا رہے اور انشاءاللہ دے دیں گے بیرسٹر گوہر صاحب بھی ان کے حق میں گواہی. اگلی خبر، خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور محسن گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، وزیر داخلہ سینیٹر محسن نقوی اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی ملاقات، مجموعی صورتحال اور بگڑتی ہوئی جو صورتحال ہے اس میں ایمرجنسی اور گورنر راج کے اوپر بات چیت کی گئی. خیبر پختونخوا میں گورنر راج اور ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ ہو چکا، آرٹیکل 232 یا 234 اس پر حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے. گورنر راج پورے صوبے میں لگے گا، ایمرجنسی شاید کچھ اضلاع میں لگے. آگے جو پرویز خٹک ہیں، آپ کو پتا یہ بھی بڑے لیتھل ہتھیار ہیں جنرلز کے، وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں ایمرجنسی لگانا اچھا اقدام نہیں. مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں لیکن جب آپ کہیں گے آپ نے اسلام آباد پر حملہ کرنا تو کیا وفاقی حکومت چپ کر کے بیٹھے گی؟ وزیر اعلیٰ تھا کوئی دہشت گرد، جب میں وزیر اعلیٰ تھا تو کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا گورنر راج لگے، مجھے ایمرجنسی لگتی ہوئی نظر آتی ہے، مجھے ایمرجنسی کی صورت میں کردار ادا کرنے کی کوئی آفر نہیں آئی، اگر آئی تو سوچوں گا. وزیر اعظم مشیر برائے داخلہ پرویز خٹک، وہ کہہ رہے ہیں میں تیار ہوں، مجھے اگر کوئی ذمہ داری دیں لیکن مجھے لگتی ہوئی ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہی. اسلم غوری رپورٹ کرتے ہیں، اسلم غوری صاحب جو ہیں یہ ترجمان ہیں فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے، وہ کہتے ہیں گورنر راج یا ایمرجنسی لگوانے کا کہنا آسان ہے، اس کے بعد اس صوبے میں حکومت کرنا بہت مشکل ہے. مولانا صاحب کے پاس وزراء آئے تھے، انہوں نے اس چیز کی ذمہ داری لی تھی کہ فی الحال وہ کسی قسم کا گورنر راج یا ایمرجنسی نہیں لگا رہے. دوسری طرف اب پہلے ہی کے پی کی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، کیا اب ایک دوسری جنگ سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی شروع کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اب ایمرجنسی یا گورنر راج لگے گا. چاند اضلاع میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے لیکن پی ٹی آئی کو فٹ کرنے کا پروگرام بنا لیا گیا ہے، بہت سختی ہوگی. یہ ایم ایف جو ہے، میرا دل تو کرتا ہے ایم ایف کا پورا ہی لفظ لے دیا کروں، مائی فیوریٹ، مطلب آپ پتہ نہیں کیا سمجھ گئے. تو وہ مریف فاروق پھر کہتے ہیں تو یہ صحافت رہے گی، کل تک یہ بالکل گورنر راج لگ رہا تھا، اب پھر چینج کر لی اپنی پوزیشن، تو صبح کوئی اور بات ہے، شام کوئی اور بات ہے، اور جو ٹیوا چل گیا کیونکہ سارے انالیسز کیے ہوئے ہیں ہم، بہرحال آپ کے سامنے اپنے انالیسز پر ابھی تک قائم ہے، غلط ہو سکتا ہے. مجھے، کیونکہ ہمارے جرنلز کسی حد تک بھی بے وقوف ہو سکتے ہیں، جو انہوں نے بنگلہ دیش پاکستان توڑا تھا، بنگلہ دیش بننے دیا تھا، انہی کا کارنامہ تھا، ان کی بے وقوفی کا تھا، تب بھی اگر شاید ہم ہوتے اس وقت بھی تو پرڈکٹ نہ کر پاتے کہ یہ اتنے پست سوچ ہیں. تو یہ کر سکتے ہیں کچھ بھی، لیکن میرا تجزیہ ابھی بھی ہے کہ گورنر راج یا ایمرجنسی یہ اس طریقے سے نہیں لگائیں گے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو شامل کر کے بیچ میں کام ڈالیں گے جو بھی، کیونکہ یہ انہیں وہاں لوگوں کی نظروں میں بدنام کرنا چاہتے ہیں، یہ خود ایسا کچھ نہیں کریں گے. آگے، بکا خیل کا وہ علاقہ جو فوج نے آپریشن کے بہانے مقامیوں سے خالی کروایا، 3 سال کے اندر ان کی واپسی کا وعدہ کیا لیکن اب ہر سال چلغوزے کی فصل بیچ کر 4 ارب روپے کمایا جاتا ہے، جن کو واپس لانے کا وعدہ کیا تھا، آج 10 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی واپس نہیں لایا گیا. وقار خان یہ کہتے ہیں کہ بکا خیل کے علاقے میں بھی ایسی فوجی آپریشن کیا گیا، کہا کہ آپ کو بس چند مہینوں میں واپس لے آئیں گے، 10 سال ہو گئے اس زمین پر، اب فوجی جنرلز نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں چلغوزے کی فصل لگاتے ہیں، اسے بیچ کے 4 ارب سالانہ کماتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو واپس ان کے گھروں تک نہیں جانے دے رہے. یہ صورتحال جو ہے وہ وقار خان جو ہے ایکسپلین کر رہے ہیں.
آخر پر آپ کو یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. مولانا کو پی ٹی آئی نے اور حکومت کے درمیان مذاکرات سے آگاہ کیا ہے اردلی صاحب نے. اور اس سے پہلے خبر یہ آئی تھی, فہیم اختر ملک نے رپورٹ کیا کہ بریک تھرو ہو گیا, حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مولانا فضل الرحمان کی میزبانی میں مذاکرات ہوں گے. اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف چلتا ہے. دل یہی ہے کہ وہاں فوجی آپریشن ہوں, پیسے بھی خیبر پختونخوا کی حکومت دے, مریں پختون, معدنیات بیچیں جنرلز. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। समेन नाजरीन, आप रेडियो हम वतन की उर्दू नशरियात बराह रास्त रेडियो वेस्टब्रो के स्टूडियो से और नई दुनिया के प्लेटफॉर्म से देख और सुन रहे हैं। आज 11 अक्टूबर इतवार का दिन है, 11:32 हो रहे हैं। रेडियो हम वतन अपनी नशरियात लेके हाजिर है। आज के प्रोग्राम कुछ यूँ हैं कि अभी चंद ही लम्हों के बाद बिस्मिल्लाह करा प्रोग्राम मैं आपका मेज़बान रज़ा मुस्तफ़ा लेके हाजिर होऊंगा। हसब मामूल 12 बाशी के संग प्रोग्राम जनाब बाशी कुरैशी साहब और नसर मलिक साहब उस प्रोग्राम को लेके आएंगे, और 1 खट्टी मीठी बातें लेके जनाब जफर शेख आएंगे। आज उनके स्टूडियो में मेहमान कौन होंगे ये हम उन्हीं के प्रोग्राम में जानेंगे। तो सामीन नाजरीन, चलते हैं स्टूडियो में। मेरे साथ जनाब बाशी कुरैशी साहब हैं और इस हफ्ते की चंद खबरें जो हैं वो बातें जो हैं वो करते हैं जनाब बाशी कुरैशी साहब के। बाशी साहब, आपका शुक्रिया, आपने जो है वो वक्त दिया। तो चलते हैं बाशी साहब, 5 अक्टूबर को इमरान ख़ान साहब की जो है वो 74वीं सालगिरह थी, और इमरान ख़ान साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन और उसके बानी भी हैं। इमरान ख़ान साहब जो हैं वो एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने तकरीबन अब से 25-30 साल जो है वो स्ट्रगल की पाकिस्तान की सियासत में। एक क्रिकेटर थे और उन्होंने 1992 में पाकिस्तान को जो है वर्ल्ड कप जितवा के दिया। अब तो 1992 कहाँ और 2026 कहाँ, लेकिन वो आज भी जो है वो अपने क्रिकेट की वजह से जो है वो ज़्यादा मकबूल हैं। अपने दौर में एक बादशाह की तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, फिर वो सियासत में आए। सियासत में उनके साथ पिछले जो 2018 में जो उनको हुकूमत मिली, हमने उसमें देखा कि पाकिस्तान के क्या हालात थे। उसमें इंडिया के साथ भी हमारी कुछ झड़पें हुई, उसके साथ कोविड का भी जो दौर था उसको भी उन्होंने किस तरह हैंडल किया, और पाकिस्तान में मौशियत वगैरह जो है वो किस तरह जो है फ़रोग पा रही थी। लेकिन फिर हमने सडनली देखा कि एक अदम अतमाद आता है उसमें, और उनसे जो है उनकी हुकूमत जो है वो छीन ली जाती है। उसके बाद उन पर जो है बहुत से केसेस जो हैं वो बनाए जाते हैं, और वो आज भी जो है वो जेल में हैं। तो बाशी कुरैशी साहब, ये थोड़ा सा था जो इमरान ख़ान साहब के हवाले से कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो कौन है। बाशी साहब, उनकी सालगिरह जो है वो 5 अक्टूबर को थी, और इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो PTI ने जो है वो एक धरने का भी जो है वो ऐलान किया हुआ है उसमें भी। तो क्या पाकिस्तान में PTI ने इमरान ख़ान साहब की सालगिरह मनाई?
2: अब उसको तो काफ़ी दिन हो गए हैं, क्योंकि आप जैसे अभी आपने ख़ुद कहा है कि वो पिछले 3 से जेल में हैं, लेकिन वो जहाँ भी हैं बहुत से उनके करोड़ों उनके चाहने वाले और उनके फॉलोअर जो हैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात तो तमन्ना रखते हैं। और हम भी रेडियो हम वतन की तरफ से, मैं समझता हूँ हम ज़ाती तौर पर, आप और मैं और बहुत से लोग जो हैं जो जमहूरियत पसंद हैं, जो चाहते हैं मुल्क में अमन हो, मुल्क में जमहूरियत हो, हम ख़ुद इमरान ख़ान साहब को सालगिरह मुबारक तो कह सकते हैं, यहाँ पे खा वो जेल में हैं। और जैसे अभी आपने कहा, उन पर तकरीबन 300 से ज़्यादा मुकदमात हैं, जिसमें दहशतगर्दी का भी एक मुकदमा है जो हर शख्स की समझ से बाहर है। मैं इंटरनेशनल मीडिया पे काफ़ी नज़र रखता हूँ, तो आप यकीन कीजिए कि हर तरफ से इमरान ख़ान साहब के हक़ में आवाज़ उठ रही है और पाकिस्तान पे बहुत तनकीद हो रही है। और ये जो तनकीद है उससे पाकिस्तान में ख़ुद बेचैनी पाई जा रही है। तो अभी जैसे अभी आप फरमा रहे थे कि हुकूमत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हंगामी हालात नाफिज करना चाहती है, क्योंकि वो उनके काबू में हालात आ नहीं रहे। PTI जो है वो पूरे पाकिस्तान में जलसे करा रही है, और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हुकूमत पे प्रेशर डाला जाए। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे खुदगर्ज लोग हैं जो पाकिस्तान की सलामियत को बहाना बना के वो जो है वो हर वो हरकत कर रहे हैं जो सलामती पाकिस्तान की सलामती की मुखालफ है। मैं चंद रोज़ पहले यूट्यूब पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जो ISPR ने की थी, उसमें जनरल शरीफ जो है उसके डायरेक्टर हैं, वो बहुत इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पे, तो वो इमरान ख़ान साहब का नाम नहीं ले रहे थे। वो ये कह रहे थे वो ये करता है और वो करता है, उसने पाकिस्तान की तारीख में जो है सबसे ज़्यादा लाकानूनी फैलाई है वो किया। तो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं मंसूर अली ख़ान, मैं उनको ज़ाती तौर पर पसंद नहीं करता क्योंकि वो भी काफ़ी डंडी मारते हैं, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने बात की वो बहुत काबिल तारीफ़ है। उन्होंने जनरल साहब से कहा कि मुझे ये आप बताइए कि वो कौन है, वो जो आप लफ्ज़ वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो इमरान ख़ान साहब की बात कर रहे हैं, आप नाम क्यों नहीं लेते? आप वो मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, सबसे पॉपुलर लीडर है, सबसे बड़ी पार्टी का वो चेयरमैन है, और आप उसको कह रहे हैं वो ये करता है वो ये करता है, आप उसका नाम लें, सीधी तरह बात करें खुल के। तो जनरल शरीफ जो हैं उनके चेहरे पे काफ़ी गुस्सा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे वहाँ, तो वो हमेशा वो जैसे उल्टी बातें बहाने बना के वो उस चीज़ को पेश करते हैं। फिर मंसूर अली ख़ान ने एक और बड़ी खूबसूरत, उसने कहा अगर आप ये समझते हैं कि इमरान ख़ान साहब तफरका फैलाते हैं और पाकिस्तान के मुखलिस नहीं हैं, तो इसका मकसद है कि फिर अवाम उसको पसंद नहीं करते होंगे। आप इलेक्शन करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप देख लें कि कौन जीता कौन नहीं जीता। तो उस पर वो कहने लगा इलेक्शन कराना हमारा काम नहीं है, और वो ये फिर वो ऐसे ही बहाने बनाने,
1: हमारा सियासत से कोई तल्लुक
2: नहीं, हमारा वो हमेशा।
1: बड़ी मज़े की बात है ना कि हर दूसरे हफ्ते आके इनको जो है वो बताना पड़ता है कि जी पाकिस्तान फौज का जो है वो सियासत से कोई तल्लुक नहीं है।
2: देखिए जब वो कहते हैं कि जब झूठ बोलो तो इस तरह बोलो कि वो सच लगे, और वो फिर उसके लिए फिर इंसान को बेशरम होना पड़ता है। आप बार बार जब झूठ बोलते हैं ना, दसवीं बार लोग कहते हैं शायद ये ठीक ही कह रहा है क्योंकि जो ये बात दोहरा रहा है, चलिए उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे अब आपने भी कहा है कि इमरान ख़ान साहब को सालगिरह मुबारक, और उम्मीद है कि उनको जो है रहाई मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने अभी चंद दिनों पहले एक बात निकली है उनकी जेल से, उन्होंने ये कहा कि देखें मैं 3 साल से यहाँ बैठा हूँ, मेरी सेहत पे असर हुआ है, सब कुछ हुआ है, अब आगे ये क्या कर लेंगे, बस और कुछ नहीं कर सकते ये, तो मैं इधर ही ठीक हूँ, कोई बात नहीं, जख रख रख रहो मुझे रखना है, कब तक तुम रखोगे। तो ये बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी बात होती कि उनको मौका मिलता वो आज़ादी से अपने मुल्क में अपनी बात कर सकते, और अगर लोग उनको पसंद नहीं करते तो उनको जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे।
1: अच्छा बशीर साहब, अभी हम क्या कहते हैं शहबाज गिल साहब का जो है वो वीलॉग सुन रहे थे
2: जी,
1: और उन्होंने फरमाया कि इंडिया में भी बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है,
2: हो रहा है, अभी भी हो रहा
1: जी,
2: है
1: तो, लेकिन वहाँ पे भी जो है उस तरह लाठी चार्ज वगैरह नहीं हुआ, कुछ जो लोगों को उठा के जेल में डाल दिया गया, फिर उनको छोड़ भी दिया गया, लेकिन कुछ
2: नहीं। लाठी चार्ज जब उन्होंने शुरू किया था चंद महीने पहले, बहुत मारा लड़के बच्चों को, जब वो काकरोच जनता पार्टी ने जब पहला पार्लियामेंट जंतर मंतर के बाद जो किया, उन पर बहुत बैठ के गोलियाँ मारी गई हैं उनको, वो जो छर्रे वाली बंदूक होती है, तो जुल्म उन्होंने बहुत किया। उसके बाद वज़ीर तालीम जो है इंडिया के, उनको जो है इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब वो जो एहतजाज है वो काकरोच पार्टी के हाथ से निकल के स्टूडेंट ने जो है अपने हाथ में ले लिया। कल मैंने देखा है ध्रुव राठी जो है ना, वो जो यूट्यूबर हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि वो आए हुए थे इंडिया और उन्होंने एक जलसे से ख़िताब किया। राहुल गांधी जो है वो भी अब आ गए हैं, तो ये तहरीक बहुत ऐसा ऐसा बढ़ रही है।
1: बशीर साहब, जो शहबाज गिल साहब अपने व्लॉग में कह रहे थे, वो कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में 26 नवंबर को जो है वो सीधी गोलियां जो हैं वो लोगों को मारी गई, इस तरह का यानी इंडिया में माहौल नहीं, लेकिन यूनाइटेड नेशन और पूरा जो वेस्टर्न मीडिया है उन्होंने कहा है कि जी इन लोगों को छोड़ें और या आप गलत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके हवाले से जो है वो आपकी जो यूनाइटेड नेशन वगैरह जो है वो उस तरह आवाज़ नहीं उठाते इमरान ख़ान साहब या PTI के लोगों के लिए।
2: नहीं, ये आपकी बात एक तरह से ठीक भी है, लेकिन मैं जैसे मैंने कहा कि मैं आलमी मीडिया पे काफ़ी नज़र रखता हूँ, बहुत से ममालिक में ऑफिशियली ना हो, एनजीओज़ की तरफ से, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से, बल्कि यूनाइटेड नेशन के अंदर खुद एक दो दफ़ा जिक्र हुआ है उनका। और ये लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक पाकिस्तान में मिलिट्री जो है बिल्कुल इख्तदार में बैठी हुई, इंडिया में ये बात नहीं है, तब तक बड़ा मुश्किल है। अगर देखें, अगर शरीफ फैमिली अगर उनको छोड़ना भी चाहती हो, या ये जो हुकूमत है जो फॉर्म 47 वाली, फ़ौज कभी नहीं मानेगी इस चीज़ को। बात जो है वो फ़ौज की है, इस हुकूमत की बात नहीं है। और फिर ये, फिर हम हमेशा बात करते हैं कि ये कैसी बात है कि दूसरे ममालिक में, नेपाल में, श्रीलंका में, अभी इंडिया में वो जो वहाँ पे बहुत एहतजाज हुए हैं, पाकिस्तान में हम जो है ना कुछ बेहिस हैं, और उसके काफ़ी वजूहत है, लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, कुछ काफ़ी और चीज़ें हैं।
1: भाई साहब, इसी तरह जो है क्या कहते हैं, 7 अक्टूबर 2023 में,
2: जी,
1: आज से 3 साल पहले, हमास ने जो वहाँ पे
2: इसराइल पे जो उन्होंने अटैक किया था,
1: या कुछ लोगों को जो है वो अगवा कर लिया था और फिर उन पे तशद्दुद भी किया,
2: 1200 लोग मर भी गए थे उसमें।
1: उसके बाद जो है अब 3 साल हो गए हैं, वहाँ पे जिस तरह फलस्तीनियों के साथ गाज़ा में जो सलूक हुआ है, अभी तो खैर यानी इंटरनेशनल मीडिया में उस तरह खबरें नहीं दी जाती कि जब से मिस्टर ट्रंप साहब आए हैं और उन्होंने एक सुलह का जो है वो सीज़फायर करवाया था, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी वहाँ पे उसी तरह जो है वो जुल्म हो रहा है, उनको उनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। और बल्कि कल जो है वो कोपेनहेगन में एक बहुत बड़ा डेमोंस्ट्रेशन भी हुआ, जिसमें तकरीबन कहा जाता है कि 10,000 के करीब जो है वो लोग सड़कों पे निकले।
2: जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए 7 अक्टूबर 2023 ये जो हुआ है ना, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि अगर एक कौम को, एक अवाम को, एक नेशनल नेशन को आप कंसंट्रेशन कैंप में रखेंगे, ना वहाँ से कोई बाहर जा सकता है ना अंदर जा सकता है, तो वो फिर आखिर में वो लोग इतने तंग आ जाते हैं, ख़ासतौर पे यंग जनरेशन, वो कुछ ना कुछ करने जो करना चाहते हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि ये जो अटैक हुआ है, इसका इजिप्ट ने भी और कतर ने भी नतन्याहू की हुकूमत को एक हफ्ता पहले बता दिया था कि ये होने वाला है, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि CIA को भी पता था कि ये होने वाला है, क्योंकि वो उनकी नज़र तो रखते हैं। वो नेतन्याहू ने, क्योंकि वो सियासी तौर पे बहुत कमज़ोर था उस वक़्त, तो उसने ये होने दिया, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि वो जो 1200 लोग मरे हैं इसराइल में, उसमें काफ़ी लोग इसराइल के अपने हेलीकॉप्टर की शूटिंग वजह से मरे हैं, क्योंकि उनका एक हैनिबाल डॉक्ट्रिन है, वो कभी भी नहीं चाहते कि किसी इसराइली को अगवा करके और फिर उसको बहाना बना के फलस्तीनियों को छुड़ाया जाए। तो वो कहते हैं कि हम बेहतर है कि हम इनको खुद ही मार दें, लेकिन ये जो है अगवा ना हो। ये खैर एक, और अब इलेक्शन वहाँ पे हो रहा है इस महीने, तो वहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि नतन्याहू जो है वो इस मुसीबत में है कि अब पता चल रहा है कि उसने खुद इस चीज़ को जो है होने दिया, फ़ौज को उसने हुक्म नहीं दिया कि तुम नज़र रखो इस पे, और इतनी आसानी से वो नौजवान लड़के जो है हमास के अंदर आ गए और उन्होंने जहाँ पे वो किया उसका, मैं खुद उसको कंडेम करता हूँ। लेकिन साथ साथ ये भी बात दुरुस्त है कि उसके बाद जो इसराइल ने गाज़ा में किया वो जेनोसाइड है, और अभी तो उसके बारे में आपको ख़ुद पता है कि यूनाइटेड नेशन नोबल पीस कमेटी जो है, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने, यूनाइटेड नेशन के हुक्मरान ने, बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कंडेम किया इस चीज़ को कि पिछले 3 साल से वहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, पूरा गाज़ा तबाह हो गया, यूनिवर्सिटीज़ तबाह हो गई हैं, स्कूल तबाह हो गए हैं, हॉस्पिटल, वहाँ पे कोई चीज़ जो है वो नहीं बची। और अभी 1 साल से वहाँ पे जो सीज़ फायर हुई है उसके बावजूद तकरीबन 1500 फलस्तीनियों को जो है इसराइल ने जो शहीद कर दिया। एक और चीज़ मैं आपको बताना चलूँ कि ये जो हमास का जो 7 अक्टूबर 2023 जो इवेंट है, अब आप اسرائیلی جو لوگوں سے بات کریں یا زہانی سے, وہ ہر چیز کو 7 اکتوبر 2023 سے آگے لے کر جاتے ہیں. ان سے اگر پوچھو کہ بھیا 1948 سے لے کے 2023 تک ہزاروں فلسطینین غزہ میں مار دیے ہیں اسرائیل نے, تو اس کی تم بات نہیں کرتے, لیکن ان 1200 لوگوں کی بات کرتے ہو جو حماس نے مار دی ہیں. اور پھر اس کے بعد اچھا ایک اور بات ابھی سامنے آئی ہے کہ ہم جو حماس نے جو وہاں سے قیدی لیے تھے, جو ہاسٹیجز لیے تھے, ان کو بھی نتن یاہو نے چھڑانے کی زیادہ کوشش نہیں کی. وہ اس چیز میں زیادہ خوش تھا کہ وہاں پہ حملے کر کے غزہ کو تباہ کر دیا جائے اور غزہ کی جو لوگوں کو مارا جائے. 74,000 لوگ جو ہیں پچھلے 3 سال میں غزہ میں مرے ہیں اور تقریباً 250,000 لوگ بہت زخمی ہیں. 10-12,000 وہ جو ملبہ ہے نا, جو بلڈنگیں ٹوٹی ان کے نیچے دفن ہیں. تو یہ بات جو ہے بہت میں سمجھتا ہوں دکھ والی بات ہے کہ کچھ ممالک جس میں ہمارا ڈنمارک بھی شامل ہے, وہ جو ہے اسرائیل کی مدد کرتے رہے ہیں. لیکن اس کا رضا ایک پہلو جو ہے جس کو میں مثبت سمجھتا ہوں

0: इसराइल का जो इमेज जो है वो अच्छा पेश करें।
1: वो एक मूवमेंट है, वो कहते हैं हसबारा। हसबारा मूवमेंट हिब्रू में है। वो कंपेन करते हैं अपने मौकफ को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं या यूट्यूब वगैरह पे जाएं तो देखें, डेनमार्क जैसा मुल्क जिसमें हमारी हुकूमत और हमारे सारे वजीर इसराइल की सपोर्ट करते हैं, 60% डेनिश लोग जो हैं अब इसराइल से नफरत करते हैं। इसी तरह अमेरिका में है, इसी तरह इंग्लैंड में उनकी एक पार्टी है ग्रीन पार्टी, उन्होंने ज़ायनिज्म को रेसिज्म करार दे दिया है। तो ये जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, इसराइल बिल्कुल अकेला रह गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक मुल्क जो है वो एक जज़ीरा नहीं होता, एक मुल्क के ताल्लुकात होते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, उनकी ट्रेड होती है। और उन पे अब यूरोपियन यूनियन ने पाबंदी लगाई है कि जो चीज़ें इसराइल वेस्ट बैंक के इलाके में प्रोड्यूस करके बेचता है उस पर पाबंदी लगा दी है, जो सेटलर जो जुल्म करते हैं उस पर। तो ये चीज़ें जो हैं एक साइड इफ़ेक्ट जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन का मसला जो टेबल पे आ गया है ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ मेरी नज़र में।
0: बशीर साहब, अभी आपने कहा कि 60% जो डेनमार्क की आवाम है जो है वो फ़लस्तीन के साथ हैं।
1: अभी तीन दिन पहले, नहीं फ़लस्तीन के साथ नहीं है, वो इसराइल को कंडेम कर रहे हैं कि ये जेनोसाइड किया उन्होंने।
0: हुकूमतें जो होती हैं, जो जमहूरी हुकूमतें जो लोग उनको वोट देते हैं, तो क्या जो हमारी प्राइम मिनिस्टर या उनकी जो हुकूमत है इस वक्त, क्या उनको नज़र नहीं आता कि मोर देन हाफ पीपल जो है वो डेनमार्क की वो इसराइल को पसंद नहीं करते? और
1: इसलिए तो वो इस्लाम को गालियाँ देती है, इसलिए तो इस्लाम को बुरा भला कहती है, क्योंकि उसने फ़लस्तीन के मसले को यहाँ पे रहने वाले मुसलमान हैं उनके साथ नथी कर दिया है। आप देखें जब वो बातें करती है कि इस मुसलमान हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा करते हैं, मुसलमान ये करते हैं, मुसलमान वो करते हैं, तो वो चाहती है किसी न किसी तरीके से अवाम को ये बावर कराया जाए कि इसराइल और फ़लस्तीन का मसला जो है ये एक रिलीजियस मसला है और हमें इसलिए इसराइल का साथ देना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अब लोग समझदार हो गए हैं। डेनमार्क में पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट हर हफ्ते बड़ी बड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन, एक तो डिमॉन्स्ट्रेशन इतनी बड़ी थी कि उसमें 60,000 लोगों ने हिस्सा लिया था, आपको याद होगा। डेनमार्क की तारीख में बहुत कम ऐसी डिमॉन्स्ट्रेशन हुई है जिसमें इतने लोगों ने हिस्सा लिया। तो ये अब जो हो गया है, अब फ़लस्तीन का मसला जो है वो अब सामने आ गया, आप उसको छुपा नहीं सकते।
0: बशीर साहब, अभी आप जो है वो हाल ही में पोलैंड गए हुए थे, वहाँ पे आपकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है OSCE,
1: नहीं अमिस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अमिस्को। OSCE जो है वो गवर्नमेंट्स, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स का अदारा है
0: जी। तो वहाँ पे बताइएगा कि ये जो इस्लामोफोबिया के हवाले से वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या जो यूरोप है ख़ास तौर पे उसके हवाले से क्या बातें हुई, क्या जो इस्लामोफोबिया बढ़ता हुआ उसको किस तरह ये जो रोका जा सकता है?
1: जी, वैसे है कि OSCE जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसमें पूरे यूरोप के ममालिक हैं, रशिया भी है, दूसरे कजाकिस्तान वगैरह वो ममालिक हैं, अमेरिका है, कैनेडा है, तो इसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा ममालिक हैं। दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कंट्रीज़ है। तो वो हर साल वारसा में, उनका हेड ऑफिस है वो वारसा में और वियना में, तो वारसा में जो उनका हेड ऑफिस है वो हमेशा एक साल, हर साल एक दफ़ा एक हफ्ते की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें इंसानी हकूक़ की बात होती है, एंटी सेमिटिज़म, इस्लामोफोबिया, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ नफरत, इस चीज़ के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ इवेंट होते हैं। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है अमिस्को, यूरोपियन मुस्लिम इनिशिएटिव फॉर सोशल कोहिजन, हमने वहाँ पे एक साइड इवेंट रखा और उसमें हमने इस चीज़ पे ज़ोर दिया कि सियासतदान और मीडिया जो कुछ कहते हैं उसके असरात क्या हैं और उसको कैसे रोका जाए और उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो कैसे की जाए। तो वहाँ पे पूरे सारे ममालिक के अम्बेसडर वहाँ भी आए होते हैं, वो बैठे होते हैं वो उस बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में। आप को 3 मिनट मिलते हैं, आप जो कहना चाहते हैं वहाँ पे कहें। तो वहाँ भी हमने अपनी जो है मौक़ पेश किया। हम उनसे ये कह रहे थे कि हम आपको इस ये नहीं मना करते कि आप मुसलमानों को या इस्लाम को तनकीद करें या बुरा भला कहें, ये आपका हक है तनकीद करें, लेकिन आप इस चीज़ को ख्याल रखें कि جب سیاستدان کوئی لفظ استعمال کرتے

0: तो उसका असर सोसाइटी पे पड़ता है, और उस सोसाइटी में जिसमें पहले से मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ी हुई है, तो आप इस चीज़ को ज़रा ख्याल रखें कि मसलन हमारी जो वज़ीर आज़म हैं वो हमेशा जब बात करती हैं तो वो मुसलमानों को बुरा भला कहती हैं, वो ये नहीं सोचती कि वो सिर्फ डेनिशों की प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सारे जो लोग यहाँ पे इस मुल्क में रहते हैं उन सब की प्राइम मिनिस्टर हैं और उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वो नहीं करती। लेकिन हमारी कॉन्फ्रेंस ने स्टेटमेंट भी दी हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ मिनिस्टर्स वगैरह से भी मुलाकातें की हैं और उनको ये बताया कि ये जो है जो इस्लामोफोबिया बहुत बढ़ रहा है। एक मज़े की बात बताऊँ आपको, अमेरिकन अम्बेसडर जो थे उन्होंने अपनी तकरीर में सिर्फ एंटी सेमिटिज़म की बात की और क्रिश्चियन के ख़िलाफ़ जो प्रॉब्लम है मुसलमान मुल्कों में उसकी बात की, लेकिन नंबर टू जो थी वो टर्किश अम्बेसडर थी, उन्होंने अमेरिकन का नाम लिए बगैर उनको बड़ा झाड़ा। उसने कहा कि अगर यूरोप में इस वक्त सबसे बड़ा मसला है तो वो मुसलमानों के खिलाफ तासुब है और नफरत है, और इस चीज़ को आपको सोचना चाहिए। एक मैं और बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, वासा में एक जगह है जिसको कहते हैं जूश गेथो, क्योंकि जब नाजीज ने वहाँ पे हुकूमत की थी तो उन्होंने बहुत से ज्यूज को कंसंट्रेशन कैंप में जो है उस वक्त तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा ज्यूज लोग जो है पोलैंड में रहते थे, उन पे बड़े जुल्म हुए। लेकिन मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों को साथ लेके हम वहाँ पे गए, वो एक छोटा सा दीवार का हिस्सा है जो कि बाकी रह गया, बाकी सब वो तो इलाका जर्मनों ने तबाह कर दिया था। तो वहाँ पर हमने खड़े होके सब उन लोगों के लिए जिन पे जुल्म हो रहे हैं, ख़्वाह वो फ़लस्तीनियन हो, ख़्वाह वो 1945 में जो ज्यूश मिनॉरिटी के साथ जुल्म हुए, या पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहे हैं या किसी जगह पे, उसके लिए हमने दवाए खैर की और हमने वहाँ पे खड़े होकर यही कोशिश की कि दुनिया में अमन आना चाहिए, और ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया में अमन की बहुत ज़रूरत है।
1: बाशी साहब चलते हैं आगे, हमारे पास 5 मिनट बाकी।
0: जी जी, ज़रूर ज़रूर।
1: नोबल प्राइज़ जो है वो नावी पिलारी को दी गई है, वो इंडिया से शायद उनका तलक है, और
0: वो नहीं वो साउथ अफ्रीका
1: रहती हैं वहाँ पे।
0: नहीं, वो साउथ अफ्रीका में पैदा हुई हैं
1: वहाँ।
0: पहले उन्होंने जब वो बड़ी हुई यूनिवर्सिटी में उन्होंने तालीम की, तो उन्होंने सबसे पहले जो है नेल्सन मंडेला की रिहाई के लिए बड़ी कोशिश की, अभी उनकी 85 साल उम्र है। उसके बाद वो इंटरनेशनल कोर्ट में रही हैं, और मज़े की बात यह है रज़ा भाई, वो पहले शख्स हैं जिन्होंने कमीशन बना के इसराइल ने जो गाज़ा में किया उसके ऊपर सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि इसराइल गाज़ा में जेनोसाइड कर रहा है।
1: अच्छा बशीर साहब, इनको जो है वो नोबल प्राइज़ दिया गया जबकि हमारी पाकिस्तान की फॉर्म 47 की हुकूमत जो है उन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया कि जनाब मिस्टर ट्रंप साहब को जो है वो नोबल प्राइज़ जो है वो दिया जाए।
0: ट्रंप बड़े गुस्से में, आपको पता है उसने कहा है, उसने कहा इसको क्यों नहीं दिया, तुमने मुझे क्यों नहीं दिया,
1: वो कहते हैं मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ। तो बशीर साहब
0: बेवकूफ़ी वाली बात है, उसको दुनिया जानती है, उनको ये कहना कि मैं उसको नहीं जानता, इसका मकसद है कि तुम खुद बेवकूफ़ हो।
1: तो बशीर साहब, ट्रंप साहब को नोबल प्राइज़ पाकिस्तान दिलवाने में कामयाब होगा कभी?
0: सवाल ही पता, कभी नहीं। देखिए नोबल पीस प्राइज़ की जो कमेटी है वो मुल्कों की ख्वाहिशात पे नहीं अमल करती, हालांकि मैं ख़ुद एतराज़ करता हूँ कि कई दफ़ा नोबल पीस प्राइज़ जो दिया जाता है वो ऐसे लोगों को दिया जाता है जो वेस्टर्न ख्यालात के हक़ में होते हैं। लेकिन अब ये गाज़ा की वजह से अब वो सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर नोबल पीस प्राइज़ अगर अहदम मिलना चाहिए तो इमरान ख़ान साहब को मिलना चाहिए, जिन्होंने पिछले कितने अरसे से वहाँ पे जमहूरियत के लिए कोशिश की है। देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप तो हर बात में मैं ये कर दूँगा, मैं ईरान की सकाफत को मिटा दूँगा, मैं वो कर दूँगा, वो बड़के मारने में बहुत तेज़ हैं, लेकिन वो अमली तौर पर वो उनको पता है कि उनको कभी नोबल पीस प्राइज़
1: नहीं। हम पाकिस्तानी जो हैं वो एक नवा नोबल प्राइज़ भी जो है वो दे सकते हैं जनाब ट्रंप साहब को पाकिस्तान बुला के,
0: उसको मानेगा कौन?
1: देखिए
0: आपको पता है रशिया ने शुरू किया था लेनिन पीस प्राइज़, फिर वो थोड़े से चलता रहा, उसके बाद ख़त्म कर दिया। लेकिन ये है कि ये जो मिसेज पहले को मिला है ये बहुत डिज़र्विंग है और पूरी दुनिया इसकी तारीफ़ कर रही है। मैंने पहली दफ़ा देखा है کہ ایک نوبل پیس پرائز ملنے والی کی اتنی تعریف کی جا رہی ہے پوری دنیا میں ان کو، لیکن نتنیاہو اور ٹرمپ صاحب بڑے غصے میں ہیں اور وہ اس انڈرسٹینڈیبل، کیونکہ ان کو تکلیف جو ہوئی ہے کہ ایک ایسے شخص کو پرائز ملا جو ان کو ان پہ جو ہے روشنی ڈالی.
1: ویسے باشی صاحب ان دونوں کو نا ایک بچوں والی چوسنی نہیں ہوتی.
0: ہاں وہ وہ پرائز دینا چاہیے بچوں کی چوسنی والا پرائز ہے. ویری اچھا
1: باشی صاحب، آخر میں ایک اور سالگرہ تھی کل، جناب ہمارے بہت ہی پیارے محترم دوست کلیگ انکل نصر ملک صاحب جو ہیں ان کی کل 79ویں سالگرہ تھی.
0: اچھا میں ہمیشہ ہی سمجھتا تھا کہ وہ 74-75 سال کے ہیں کیونکہ نوجوان لگتے ہیں بہت، تو وہ تو میری عمر کے قریب پہنچ گئے ہیں وہ 79th. تو ہم ریڈیو وطن کی طرف سے، ٹی وی نیت دینے کی طرف سے جناب نصر ملک صاحب کو ان کی سالگرہ مبارک کہتے ہیں. کل بھی ہم نے ان کو ان کے ساتھ جو ڈنر کیا تھا بڑا مزہ آیا اور بڑی کھانا بھی بڑا لذیذ تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے انیشیٹو لیا اور ریڈیو کی ٹیم کو وہاں پہ لے کے گئے اور بڑی اچھی باتیں ہوئیں. مجھے آئی ریئلی لائک اٹ ویری مچ، اٹ واز ویری نائس. تو کیونکہ ابھی ہمارا اگلا پروگرام بھی ملک صاحب کے ساتھ ہے تو ہم پہلے ہی ان کو جو ہے سالگرہ مبارک کہہ دیں.
1: اور باشی صاحب جتنے بھی ہمارے دوست بہن بھائی جن کی بھی پاکستانی کمیونٹی میں سالگرہ تھی یا آنے والی ہے ان سب کے نام ایک گانا کرتے ہیں اور اس کے بعد باشی کے سنگ پروگرام لے کے حاضر ہوتے ہیں. سامعین و ناظرین، چند ہی لمحوں کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت سالگرہ کا گانا ہے، وہ تمام ان دوستوں کے لیے جن کی سالگرہ ہے یا تھی، ان سب کے نام. آپ اور ہم وطن ایک سنگ، نئے رنگ نئی امنگ. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84. ای میل ریڈیو سنائپلائی ہم وطن

0: अगर दी आप दी। मीडिया में रहेंगे तो आप लोगों की सोच में भी रहेंगे और जब उन्होंने अगली मरतबा वोट देना है तो तब भी आप जो है वो उनके जहन में रहेंगे। और साथ में देखें ये सारी जो हम लोग जो है ना खासतौर पे पाकिस्तानी हम मीडिया को अहमियत नहीं देते, चाहे वो मेन स्ट्रीम हो या लोकल मीडिया हो। मीडिया में आने का मकसद होता है कि आप अपनी बात जो है वो कर सकते हैं। अब अकेले वो आपसे मिलेंगे, अपनी बात समझाएंगे, मुझे समझाएंगे, लेकिन जब वो मीडिया पे बैठते हैं तो जितने लोग भी सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो उन तक जो है आसानी जो है वो पहुंच सकते हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आए लेकिन उनको वो मौका नहीं मिलता, तो अगर आपको वो मौका मिल रहा है तो मैं समझता हूँ कि उसको अवेल करना चाहिए और उसको अच्छे तरीके से अपनी आपकी जो पॉलिसीज हैं या आपका जो एजेंडा है आप उसको जो है वहाँ पे एक्सप्लेन करें।
1: नहीं, इसका दूसरा पहलू ये भी है ना रजा साहब के ये मेन स्ट्रीम मीडिया या यहाँ का लोकल मीडिया डैनिश मीडिया जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो भी हमारे जितने यहाँ गैदरिंग होती है या प्रोटेस्ट होता है या कोई ऐसा यानी प्रोग्राम होता है उसमें वो दिलचस्पी नहीं रखते। ये भी तो एक मेन मैं समझता हूँ वजह है ना, हमारे कल्चरल प्रोग्राम में वो नहीं आते, अम्बेसी के प्रोग्राम में वो नहीं आते, आपने भी देखा होगा, तो ये भी तो एक फैक्टर है ना कि वो दिलचस्पी नहीं लेते।
0: जफर भाई, ये एक जो हम उम्मीद लगाए बैठे ना या तवक्को है, ये मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जी आप मेरे जनाजे पे नहीं आए थे, आप मेरी वो फोतगी पे नहीं आए थे, इसलिए मैं आपको वोट नहीं दे रहा, ये कोई
1: नहीं, मैं डैनिश मीडिया की बात कर रहा हूँ।
0: दूसरी जो मैं वो उसी तरफ आ रहा हूँ कि दूसरा जो आपके जो लोकल या यहाँ पे कोई
1: कल्चरल
0: इवेंट्स होते हैं वहाँ पे अगर 14 अगस्त का पाकिस्तान अम्बेसी में हो गया या कहीं पे हो गया तो वो भी ज़रूरी नहीं है। देखें आप भी काम करते हैं, आपको पता है कि आपके पास जो 8 घंटे होते हैं उसमें आप जॉब करते हैं, फिर आपने बच्चों को भी टाइम देना है, फिर आपने उनके साथ जो है घर के जो सौदा सर्फ भी लेके आना है, आपने अपनी फैमिली के साथ किसी के घर दावत पे भी जाना, तो उनकी भी वही ज़िंदगी है जो हमारी है ना, जो हम 8 घंटे की जॉब करते हैं। अब हम ये भी गिला करते हैं कि जी वो हमारे पास आके जो है वो हमें बताते नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। देखें अगर मैंने वोट दिया ना किसी को तो मैं उनसे पूछने का हक बजाने भी हूँ कि देखें जी आप, मैंने आपको वोट दिया था, आपने मेरे लिए क्या किया है। लेकिन अगर हम एज ए मीडिया को लेते हैं तो अगर आशम को ले लें तो हमारा काम है इन्हें इन्विटेशन देना। हाँ, ये अपनी फेसबुक पे या अपने सोशल मीडिया पे या अपने अखबार में कहीं पे अगर लिखते हैं, अगर इनका कोई इशू है तो वो अप्रोच करते हैं। अगर हमारे पास कोई है, अगर हमें हम देखते हैं जी कोपेनहेगन बल्दिया की जो वेबसाइट है उस पर लिखा है कि जी आशम साहब लास्ट 10 मीटिंग्स में जो है वो आए ही नहीं है, तो हम इन्हें दावत दे के रेडियो पे सवाल कर सकते हैं कि देखिए जी आपको जो है अवाम ने चुना था और आप जो है पिछली 10 मीटिंग्स में वहाँ पर शामिल ही नहीं थे। वो हमारा काम है, हम अपोजिशन का काम करते हैं एज ए मीडिया जो है, तो हमारे गिले शिकवे जो है ना वो भी शायद कभी कभी जो है वो नाजायज़ होते हैं इन सियासतदानों से।
1: लेकिन मैंने ये तजर्बा भी किया है, देखा भी है कि जितने भी दूसरी कम्युनिटी के प्रोटेस्ट होते हैं ना, मिसाल के तौर पे फ़लस्तीन के, लिबनान के या तुर्की या कोई भी मतलब है, चाहे उसमें जितने भी लोग जितनी तादाद में भी हों, उसमें डैनिश मीडिया इन्वॉल्व होता है। हमारे प्रोग्राम में, हमारे प्रोटेस्ट खास तौर पे मैं अगर जिक्र करना, उसमें क्यों इन्वॉल्व नहीं होता? क्या इसके पीछे हमारी कमज़ोरी है, हमारे जो प्रोटेस्टर होते हैं या ऑर्गेनाइज़र होते हैं या सियासतदान होते हैं, किन की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको एक्टिव करें?
0: ये होता है नॉर्मली कि जब आप कोई प्रोग्राम करते हैं तो आप किसी तरीके से मीडिया को इंगेज करते हैं।
1: ठीक है,
0: आपके कोई मीडिया में कोई ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ अलग होते हैं, या आप एक प्रेस रिलीज़ लिख के जो है वो बेचते हैं।
1: जी जी,
0: तो वो मीडिया जो है आगे, मीडिया का भी अपना एक एजेंडा होता है कि हमारे पास लोग हैं नहीं है, ये हमारा एजेंडा है नहीं है कि हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट पे, जिस तरह पाकिस्तान अम्बेसी के सामने पीटीआई वाले लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो अगर वो डैनिश मीडिया को एंगेज नहीं करते, यहाँ पे देखें पाकिस्तान से ऐसे ऐसे लोग आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, अभी शहबाज़ गिल आए हुए थे, उसके अलावा ये बरतानिया से जो है वो लास्ट टाइम, अब मुझे उनका नाम जहन में नहीं आ रहा, शायान, वो आए हुए थे। तो अगर वो आते हैं आपके पास, अगर आपके पास डैनिश मीडिया के साथ एक्सेस है, तो अगर आप उनको बताते हैं कि

0: हमारे पास ये बंदा आया हुआ है, तो वो भी चाहेंगे कि उनके साथ कोई इंटरव्यू करें या उनके साथ। लेकिन हमारी जिस तरह वो खुद कह रहे थे ना, वही बात उसी को आगे बढ़ाते हैं कि हमें मीडिया का इस्तेमाल जो है वो आता ही नहीं है, हम अहमियत ही नहीं देते। हम समझते हैं कि जो मैंने अपनी फेसबुक पे लगा दिया कि मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो वही काफ़ी है, या मैंने जो है वो अपने हल्का अहबाब में बता दिया, या मैंने 10 पोस्टर लगा दिए तो वही काफ़ी है। तो वो काफ़ी नहीं होता। आप जहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं आपको चाहिए, और जो मीडिया आपके पास है उसको इस्तेमाल करें। यहाँ पे तो आप नॉर्मल ले सकते हो, अखबारों में लिख सकते हैं, कॉलम्स लिख सकते हैं कि या एक प्रेस रिलीज भेज के एज अ पार्टी की जो है वो आप भेज सकते हैं। तो ये है कि हमें खुद जो है इन चीज़ों को जो है वो देखना पड़ेगा कि हम किस तरह उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: चलें, आने वाले वक्त में देखेंगे कि किस हद तक हमारे यहाँ मुकामी सियासतदान जो हैं, चाहे वो कौंसल के हैं, रीजन के हैं या पार्लियामेंट के हैं, वो किस हद तक यहाँ के लोकल मीडिया को एंगेज करते हैं किसी भी मसाइल के हवाले से या किसी भी प्रोग्राम या प्रोटेस्ट के हवाले से। अच्छा रजा साहब, एक तो मैं ये आन एयर जनाब माजरत भी चाहता हूँ कि नसर मलक साहब की जो सालगिरह थी उसमें मैं शामिल नहीं हो सका मसरूफियत की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी हुई होगी और एंजॉय काफ़ी किया होगा आप लोगों ने। इस हवाले से थोड़ा सा अगर आप कोई जिक्र करना चाहें
0: जी बिल्कुल,
1: और अल्लाह ताला उनको जनाब लंबी ज़िंदगी दे।
0: जनाब नसर मलक साहब थे, बाशिश थे, मैं था, हमारे जो नए बाबा फूका साहब थे वो भी थे।
1: अच्छा।
0: तो हम चार लोग थे।
1: अच्छा।
0: शौकत भाई हैं वो थोड़े से मसरूफ हो गए, उनकी अचानक जो है वो मसरूफियात आ गई। तो लेकिन ये है कि हम बैठे, गपशप की, खाना शाना खाया और मुबारकबाद दी, तो काफ़ी जो है वो अच्छा माहौल रहा, काफ़ी इन्जॉय किया सब ने। तो ये है बिल्कुल आपकी और शौकत भाई की जो कमी थी वो उसमें जो है वो महसूस की जा रही थी।
1: चलें जी, मैं आनेर नसर मलक साहब को जनाब मुबारक भी देता हूँ अपनी जनाब सालगिरह की, और अल्लाह ताला उनको जनाब लंबी ज़िंदगी दे, और जो कुछ वो कर रहे हैं यहाँ डानिश सियासत के हवाले से अपने ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं वो काबिले तहसीन भी हैं। अल्लाह ताला उनको सेहतयाब भी रखे और इसी तरह वो प्रोग्राम करते रहें। अच्छा थोड़ा सा टाइम है आप कुछ।
0: जफर भाई, जो हम तो आए थे तो उस वक्त जो है वो ख़बर नहीं थी, लेकिन ये पिछले 2-3 घंटों की खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो एमरजेंसी भी और क्या कहते हैं उसका
1: गवर्नर राज
0: दोनों जो हैं वो
1: लगा दिए, नाफज हो गए। अच्छा,
0: और इस वक्त जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें जनाब क्या कहते हैं ताड़र साहब बैठे हैं, एक और वो क्या कहते हैं उनके,
1: ठीक है,
0: तो ये सब बैठ के जो है वहाँ पे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये देखें, एक मुल्क के हालात जो है आप इस तरह ख़राब कर रहे हैं कि एक प्रोटेस्ट है, यानी आप एहतजाज करना चाहते हैं, ख्वाह आप आपके नज़रिए में ठीक हो या गलत हो, लेकिन हर जमहूरी मुआशरे में एहतजाज करना, अपनी आवाज़ जिस तरह भी हम हमारे पास ये माइक है हम उसके ज़रिए जो है अपनी बात कर रहे हैं, अगर इस पर भी कोई कंट्रोल करेगा तो कौन कहाँ से जो है अपनी आवाज़ जो है उठाएगा। तो आवाम के पास तो एक ही चीज़ होती है, या वो वोट दे सकते हैं, वो भी हमने दे के देख लिया, उसको जो है वो फॉर्म 47 बना के उन्होंने उसको हमारी जो वोट की अहमियत थी उसको भी रद्दी की टोकरी में जो है वो डाल दिया। तो अब दूसरा जो आपके पास एज ए अवाम जो कम्युनिटी होती है वो एहतजाज होता है। तो अगर आप हमें एहतजाज भी नहीं करने देंगे, सड़कों पे भी नहीं निकलने देंगे, तो ये कैसी जमहूरियत है, कैसा मुल्क है फिर वहाँ पर? तो फिर आप मार्शल लॉ ही लगा दें, बिठा दें किसे। पहले भी आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी की हिस्ट्री में तो जर्नल्स जो हैं उन्होंने ही हुकूमत की है, और इल्ज़ाम देते हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने मुल्क जो है वो तबाह बर्बाद कर दी है 3 साल में जो उनकी हुकूमत रही है। ना उसमें पीपल्स पार्टी का आता है कि उन्होंने मुल्क को कितना लूटा खाया, ना नवाज शरीफ का आता है जिन्होंने हुकूमत की, और ना ये जर्नल्स खुद जो इतने अरसे से जो है वो आधे से ज़्यादा तो इन्होंने और साथ इनको अपना पपेट बना के जो आप मकासद के लिए काम करते हैं।
1: आप देखें कि ये किसी भी सूरत में ये एक अच्छा इकदाम नहीं है मौजूदा गवर्नमेंट का, और इसके बरक्स अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में भी प्रोटेस्ट हो रहा है और उसमें वो किस हद तक वो इदारे या पुलिस या जो भी मुक्तदर हैं वो किस हद तक इन्वॉल्व हैं या किस हद तक वो उनके साथ डील कर रहे हैं, कैसे वो डील कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में देखें कि ये मैं समझता हूँ कि हालात को मज़ीद ख़राब करने की ये एक कोशिश है। अल्लाह करे आने वाले वक्त में ये कुछ हालात बेहतर हो जाएँ और ये समझ सकें मुक्तदर जो हैं या जो हैं ताकतवर हल्के वो समझ सकें, ताकि क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ है।
0: ज़फ़र भाई, चाहे वो जहाँ पे आपका पैसा और ताकत इन्वॉल्व होती है वहाँ पे आप बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। देखें, इनके अपने जो मफादात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए जो है वो उनको बाकी किसी चीज़ के साथ गर्ज नहीं है कि आवाम भूखी मर रही है या वो क्या कर रही है, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है। जब तक उनकी जेबें भरी हुई हैं, उनके पास इक्तदार है, उनके पास ताकत है, वो जो चाहें कर सकें। अब देखें, एक आम इंसानी हक जो है पूरी दुनिया में कि अगर आप जेल में हैं तो आपकी मुलाकात जो है वो आपका हक है, अगर आप बीमार हैं तो आपकी जो डॉक्टर के पास जो है रसाई वो आपका हक है। अगर इन चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट करके आपने वो मनवानी है, बार्गेनिंग करनी है, तो उस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है।
1: बहरहाल रजा साहब, दुनिया देख रही है हर लिहाज से और पाकिस्तान में जो जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, अल्लाह करे आने वाला वक्त अच्छा ही हो, क्योंकि माजी में जो गलतियां हम कर चुके हैं उनका खमियाजा इस अभी तक हम भुगत रहे हैं और इस सूरत हाल के कॉन्सिक्वेंसेस भी बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। बस हमारी दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला हमारे मुक्तदर और इक्तदार पे जो काबज़ हैं उनको हिदायत दे और वो होश के नाखून लें और कोशिश करें कि कानून के मुताबिक इंसानी हकूक को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करें। बहरहाल दुआ की जा सकती है, हम तो बाहर बैठकर ये सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जो लोग हमारे पाकिस्तान में हैं वो इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं और उनके हवाले से जब मैं सोचता हूँ तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि हम तो इधर सिर्फ देख सकते हैं या बात कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ लोग जो फेस कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह करे आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, हम सब के लिए बेहतर हो। इसी पर आज का प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद और डेनमार्क पाइंदाबाद।
0: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84, ईमेल radio@hamwatan.org।